सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का 3रा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, हम सभी के जीवन में हो चुकी है एक और नई सुबह की शुरुआत, तो इस अवसर पर हम करते हैं आपके सुख और समृद्ध जीवन की मंगल कामना। श्रोताओं, अपने इष्ट देव के प्रति व्यक्त किए जाने वाले प्रेम की कोई सीमा, कोई थाह नहीं होती। यूं तो इष्ट देव को हम मंदिर में पाते हैं, लेकिन उनका वास्तव में वास तो हमारे मन मंदिर में होता है। ईश्वर अथाह है, अनंत है, वो अनेक भाव और अनेक रूपों में हमारे हृदय में विराजमान हैं। वो हर एक जीवों पर दया करने वाले हैं, वो कृपा निधान हैं, दयालु हैं, उनका हृदय बड़ा विशाल है।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में ये भजन। श्रोताओं, जब जब हम किसी की सराहना करते हैं तो हम उन्हें अपने नजदीक पाते हैं। ऐसा ही भाव एक भक्त को अपने इष्ट देव में रखना होता है, वो भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण के स्वर में ये भजन। श्रोताओं, इस संसार में हर चीज नाशवान है, अगर कुछ सदैव रहने वाला है तो वो है आराध्य का नाम। श्रोताओं, गुरुवाणी में कहा गया है कि अकाल पुरख का कोई अंत नहीं, वो जल थल समेत सृष्टि के हर शय में समाया है।

अभी आप सुन रहे थे भाई गोपाल सिंह रागी और साथियों की आवाज में शब्द। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों से नात।

श्रोताओं, आज शनिवार है, यानी शनि देव की स्तुति आराधना पूजन वंदन का दिन। तो आइए वंदना कार्यक्रम के अंत में सुन लेते हैं शनि देव की आरती।

विपिन सचदेव और साथियों की आवाज में शनिदेव की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार हैं ए हरिहरन और मिताली बी सिंह। संगीत सतीश भाटिया का।

लक्ष्मण को श्रीराम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्य पूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचान कर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार थे ए हरिहरन और मिताली बी सिंह। संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: मैंने जीवन से प्यार किया है और यद्यपि कई अदृश्य बाधाएं मेरे चारों ओर खड़ी रहीं, फिर भी जीने की अभिलाषा मुझे बाध्य करती रही कि मैं जीवन से खेलूं, उसको किनारे से झांक कर देखूं और कभी उसका दास बनकर न रहूं। मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा एकाकी करनी होती है, इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय में किसी दूसरे पर निर्भर रहना संभव नहीं है। दूसरों पर निर्भर रहना निराशा को आमंत्रित करना होता है। लोग प्राय कर्म से बचते हैं क्योंकि उन्हें परिणामों का भय होता है। कर्म का अर्थ है जोखिम और खतरा। विपत्ति दूर से भयंकर लगती है, लेकिन यदि आप विपत्ति को निकट से देखें तो वो इतनी अप्रिय नहीं रहती। अक्सर वो एक आनंदवर्धक सहचरी सिद्ध होती है, जीवन के उत्साह और उल्लास को बढ़ाने वाली हुआ करती है। संभवतः ये कर्म और कर्म का विचार है जिससे मैं परिव्याप्त रहता हूं, और जब कर्म के अवसर से वंचित होता हूं तब मैं ये कल्पना करता हूं कि मैं कर्म के लिए उद्दत हो रहा हूं। जब किसी पिछले क्षण में विचार और कर्म के बीच पूर्ण सामंजस्य रहा तब विचार कर्म में परिणित होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ है। कर्म फिर विचार को उद्दीप्त करके अधिक सम्यक बोध का कारण बना है। तब अस्तित्व के उस क्षण में मैंने जीवन में एक विशेष परिपूर्णता और गहन संप्राणता का अनुभव किया है। सुख जिस अनुभूति का नाम है वो बाहरी मौसम पर बहुत कम निर्भर करता है। मुख्य रूप से यह एक आंतरिक स्थिति है और इसकी उत्पत्ति इस बात से होती है व्यक्ति के विचार और कर्म में जितना अधिक परस्पर संबंध और समन्वय होगा उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा और उतना ही अधिक वो व्यक्ति सुखी होगा। तब कोई आंतरिक विरोध या द्वंद्व नहीं रहेगा। जीवन बहुत समृद्ध और विविधता पूर्ण है, यद्यपि उसमें बहुत सी दलदल और कीचड़ भरे स्थान हैं, तथापि उसमें विस्तृत समुद्र भी है, पर्वतमालाएं हैं, हिमप्रपात हैं, समुद्र हैं, तारों भरी रातें हैं, घरवालों और मित्रों का प्रेम है, किसी सामान्य उद्देश्य में सहकर्मियों का साथ है, संगीत है, पुस्तकें हैं और विचारों का साम्राज्य है। मैंने जीवन को जितना ही अधिक देखा है उसे साहसपूर्ण कार्य और अत्यधिक दिलचस्पी से भरा पाया है, जिसमें सीखने और करने के लिए बहुत कुछ है। संभवतः संघर्ष ही जीवन को अधिक महत्व प्रदान करता है। अंतिम परिणाम इतना नहीं, नई नई चीजें पैदा करना ही जिंदगी का प्रमाण है। किसी चीज को दोहराना या नकल करना नहीं है। जिंदगी खुद एक अजीब मेल है, जिस रूप में है उसी रूप में हमें उसे लेना चाहिए और तब इसे समझना होता है और सुधारना होता है। जीवन की अपनी तेज गाड़ी पर चढ़कर सरपट दौड़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किधर जाना है, यानी हमें कुछ कल्पना तो होनी ही चाहिए कि जीवन का ध्येय क्या है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा में आइए सुनते हैं वीरेश कुमार से काव्य पाठ।
2: एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है गीता गौतम गांधी।

आया यह माया का अंधियारा, क्या अपना है कौन पराया, यह माया का अंधियारा। सत शिव प्रेम अहिंसा की तीनों है अमृत धारा, सत शिव प्रेम

आलो कित है जग सारा, सत शिव प्रेम अहिंसा की, तीनों हैं अमृत धारा। और अब कुंडलिया प्रस्तुत करता हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आयुर्वेद के अनुसार नेत्रों के कुल मिलाकर 76 रोगों का उल्लेख है, जिनमें मुख्यतः दूर और पास की दृष्टि का क्षीण होना, मोतियाबिंद का होना, आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव रहना, सिरदर्द का कभी कभी अथवा हर समय रहना, आंखों में लाली रहना, खारिश का होना, विशेष रंगों के प्रति दृष्टिहीनता, दिन की और रात की दृष्टिहीनता, स्नायुमंडल की दुर्बलता से ग्लाइकोमा, आंखों में गुहेरी का होना आदि अनेकों रोग हैं। इनके प्रमुख कारण हैं धूल अथवा धुएं से भरे स्थान पर रहना, आंखों को उपयुक्त व्यायाम न देना, मानसिक और शारीरिक तनाव का होना, अधिक धूप और गर्मी से बचाव न करना, आवेग को रोकना, उल्टी को रोकना, रेल या बस आदि में पढ़ना या लिखना, बासी वस्तुओं का अधिक सेवन करना, अधिक तेज आग के पास कार्य करना, मौसम के विपरीत खाने वाली वस्तुओं का अधिक सेवन करना, अत्यधिक बारीक छपाई का साहित्य पढ़ना, दृष्टि कमजोर होने पर भी उपचार न करना, अधिक शोकाकुल रहना, गलत विधि से पढ़ना या लिखना, कम रोशनी में पढ़ना या लिखना, पढ़ने या लिखने के स्थान पर उचित दूरी न रखना, टेलीविजन अथवा सिनेमा को बहुत नजदीक से देखना, नशे वाली वस्तुएं जैसे चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, पान मसाला, तंबाकू आदि का अधिक प्रयोग करना, मसालेदार चटपटे, चाट, मांस, मिठाइयों का अधिक सेवन करना, कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में स्थान न देना। मधुमेह का प्रभाव आंखों पर पड़ता है और गुर्दे के रोगों में भी नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है। नेत्र रोगों का उपचार अनेक पद्धतियों द्वारा संभव है। किसी भी स्थायी आसन में बैठकर रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें, आंखें खोलकर ऊपर और नीचे बारी बारी से देखें, ऊपर माथे पर बाहों के बीच में तथा नाक के नीचे अग्रभाग पर देख सकते हैं। ये क्रिया 3-3 आवृत्तियों से प्रारंभ करके 10-10 आवृत्तियों तक ले जा सकते हैं। अंतिम आवृत्ति के पश्चात आंखें बंद कर विश्राम करें, यदि आवश्यकता समझें तो पहले भी कर सकते हैं, क्षमता अनुसार ही करना है। इसी प्रकार दाएं और बाएं देखें, दाएं कंधे को देखें और बाएं कंधे को देखें। अभ्यास होने पर कल्पना और प्रयास करें कि दाएं व बाएं कान को देख रहे हैं। गर्दन को स्थिर रखें, केवल आंखों की पुतलियों द्वारा कार्य करें। पहले धीरे धीरे 3 आवृत्ति करें, गति को बढ़ाकर 10 तक कर सकते हैं। तत्पश्चात आंखें बंद करके विश्राम करें। इसी विधि से बैठकर चारों कोनों पर 4 काल्पनिक बिंदु बनाएं, बारी बारी से उन्हें देखें। प्रत्येक बिंदु पर एक एक पल रुकें। ये क्रिया घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में करें। ये 2-2 आवृत्तियों से आरंभ करके 8-8 आवृत्तियों तक करें। आंखें बंद करके विश्राम करें। अपनी आंखों के सामने एक काल्पनिक गोला बनाएं और दाएं से बाएं गोलाकार में दृष्टि को घुमाएं। ऐसी कल्पना करें मानो विश्व की सबसे बड़ी घड़ी हमारे सम्मुख है। पुतलियों को इस प्रकार घुमाएं जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। पहले 3 बार धीरे धीरे घुमाएं, फिर 3 बार थोड़ी तेजी से घुमाएं, फिर 3 ही बार और अधिक तेजी से घुमाएं। इसी प्रकार 9 आवृत्तियां घड़ी

0: के विपरीत दिशा में घुमाएं। अभ्यास अच्छा होने पर एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में पुतलियों को घुमाएं। कुछ देर चलते हुए पानी की लहरों को अपलक कुछ देर देखते रहें। जब आंखें थक जाएं तो बंद करके कुछ विश्राम देवें। यह काम कम से कम 3 बार करें। ऊंचे स्थान से जल की धारा बह रही हो, झरना हो, उसके एक स्थान पर दृष्टि को स्थिर करके अपलक दृष्टि से देखें। धारा चल रही है लेकिन दृष्टि स्थिर हो, यथाशक्ति कुछ देर देखने से आंखों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। नीले आकाश को खड़े होकर, बैठकर अथवा लेटकर देखें। अपलक दृष्टि में देखें, शून्य में देखते जाएं। आंखें थकने पर बंद करके विश्राम करें। इसे भी कम से कम 3 बार करें। प्राकृतिक हरा रंग आंखों के लिए एक वरदान है। हरी घास को प्रातःकाल देखना नेत्र ज्योति की वृद्धि करता है। नंगे पांव सुबह सवेरे हरी घास पर चलना आंखों के लिए लाभदायक है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने जाना आंखों के यौगिक उपचार के बारे में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं मिश्रित खेती आज की आवश्यकता के संबंध में। किसान भाइयों भारत एक कृषि प्रधान देश है और भैया देश की बड़ी आबादी आज भी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों हमारे सामने बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए आज मौसम में बदलाव और जल की कमी को देखते हुए और साथ ही साथ खेती की बढ़ती लागत जैसी अनेक समस्याएं हमारे किसान भाइयों के सामने हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए मिश्रित खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। किसान भाइयों सबसे पहले जान लेते हैं कि मिश्रित खेती का क्या अर्थ है। भाई एक ही खेत में या कृषि व्यवस्था में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या अन्य कृषि संबंधी कार्यों को अपनाना, हमारे किसान भाई खेत में गेहूं, धान, दलहन की फसल उगाने के साथ साथ भैया जो हमारी नकदी फसलें हैं चाहे सब्जियों की हों या भैया बागवानी हो या भाई जैसा गन्ने की फसल है, गन्ने को हम 4x4 का यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 4 फीट रखकर और उसके बीच में भैया हम मिश्रित खेती में चाहे सब्जियों की फसल लगा सकते हैं या भैया कोई ऐसी नकदी फसल लगा सकते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों की लगातार आमदनी बनी रहे। तो इस प्रकार की खेती को भाई हम मिश्रित खेती के अंतर्गत रखते हैं। किसान भाइयों मिश्रित खेती का सबसे बड़ा लाभ ये है कि किसान की आय के कई स्रोत बन जाते हैं। भैया यदि एक फसल का उत्पादन घट जाए तो दूसरी फसल से हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है वो होती रहती है और भैया उनका खर्च चलता रहता है। तो किसान भाइयों इससे हमें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाइयों मिश्रित खेती मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायक है। साथ ही साथ भैया नकदी फसलों में यदि गन्ने की फसल के साथ हम दलहन की फसल लगा लेते हैं तो भाई दलहन की फसल में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारे मिट्टी में करते रहते हैं और भैया उनकी फसलें हैं उनकी जड़ों में ऐसी गांठें बन जाती हैं जिनमें भैया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और जो हम अन्य फसल अगले वर्ष अपने खेत में लगाते हैं या तो भैया उसको हम जब खेत में जोत देते हैं तो भाई हम जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की कम मात्रा प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो भैया इस तरह से हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो भी कम हो जाती है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला जो खर्च है हमारे किसान भाइयों का वो भी बच जाता है। किसान भाइयों साथ ही साथ यदि हम खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो भाई जो पशुओं का दूध है भैया वो हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है। साथ ही साथ हमारे किसान भाई आजकल डेयरी पर दूध को भैया देकर भी अपनी आमदनी में 4 चांद लगा सकते हैं। साथ ही भैया हमारे खेतों के लिए गोबर की सड़ी खाद हमारे पशुओं से मिल जाती है जिससे हमारे खेत लंबे समय तक उपजाऊ बने रहते हैं। आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण कभी सूखा, कभी अत्यधिक वर्षा, कभी तापमान में अचानक वृद्धि जैसी समस्याएं हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं, देखने में भी आती हैं। तो वही मिश्रित खेती एक ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों को अधिक सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करती है और मिश्रित खेती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर भी बढ़ाती है। किसान भाइयों हम खेती के साथ अन्य फसलें लगाते हैं या भैया पशुपालन करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं

0: तो उससे भी भैया हमारे किसान भाइयों का जो रोजगार है वो चलता रहता है और आमदनी उनको बराबर होती रहती है। इससे गांव में रोजगार बढ़ता है और लोगों का शहर की ओर पलायन भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, मिश्रित खेती को सफल बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए उचित प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, अच्छे बीज, पशु चिकित्सा सुविधाएं, सिंचाई और बाजार की व्यवस्था। क्योंकि भाई किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं और भाई हमें प्रशिक्षण आवश्यक रूप से लेना चाहिए किसी भी कार्य का। भैया हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों का बीमा आवश्यक रूप से कराना चाहिए। भाई मिश्रित खेती केवल खेती करने का एक तरीका नहीं बल्कि भैया किसान भाइयों की आय, मिट्टी और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रभावी माध्यम भी है। आज जब हम कृषि और अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तब मिश्रित खेती आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने जाना मिश्रित खेती के महत्व के बारे में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आइए आपको दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आपको बता दे देते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जिले की हलचल आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। आज दी जाएगी बाराबंकी और मिर्जापुर के जिले की खास जानकारी। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत सुगम संगीत में कलाकार परवेज मेहंदी से गजल आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में लोकगीतों और रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:15। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषण से बचाव संबंधी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी शाम 5 बजे। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में विविध कलाकारों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा दोपहर 1:15। कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में भुवनेश गिरी से रागनी आप सुनेंगे सुबह 9:25 पर। और कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब से कुछ देर में 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: का धर्म है मनन करना, मनन ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सच से मजबूत

0: जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का हुआ सफल प्रक्षेपण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है यह सफलता। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। आस्था और उल्लास के साथ राज्य भर में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि EOS-05 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जीएसएलवी, मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएलवी F-17 वाहन में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: प्रदेश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए। मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया गया। वहीं काशी विश्वनाथ धाम सहित विभिन्न शहरों के कई मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस पावन धरती पर हुआ था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। श्री योगी ने धार्मिक महत्व की जगहों को पुनर्स्थापित और विकसित करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रजतीर्थ विकास परिषद ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के क्रम में मथुरा और वृंदावन के विकास पर लगातार काम कर रही है।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस ब्रज भूमि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान

0: यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए
1: इसे भव्य स्वरूप यहाँ के मन के जनप्रतिनिधि साथ मिलकर के देने का कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिसर तैयार हो जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। ये पर्व और त्योहार केवल एक आस्था ही नहीं हमारी आर्थिक आधार भी।
2: मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन्स में पुलिस की ओर से आयोजित सांस्कृतिक धरोहर के उत्सव में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए सभी से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए धर्म सत्य और न्याय की स्थापना और कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की प्रेरणा देता है। देर रात मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज एंड गोरखपुर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्त मिश्रा ने कल ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को समझने के बाद जल्दी ही रणनीति तैयार की जाएगी और उसके क्रियान्वयन का असर जल्द ही दिखाई देने लगेगा। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में कल स्थानीय जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सात परिवारों को सहायता राशि का चेक दिया। इस अवसर पर श्री पाल ने केंद्र राज्य की सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकता और समर्थन व्यक्त है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं फंसा है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वालों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रदेश में होमगार्ड के 41,420 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 14 सितंबर से आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 5 सितंबर से प्रस्तावित थी। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर ये बदलाव किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का हुआ सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है ये सफलता। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। आस्था और उल्लास के साथ राज्य भर में बनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यही अद्वितीय तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। संतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्श होना और उन पर चलना, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। आज की नई नवेली और उजली सुबह में आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख अखबारों की कुछ खास सुर्खियों के साथ। श्रोताओं, सुर्खियों की शुरुआत करते हैं अमर उजाला अखबार से। अखबार लिखता है, प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के में पदक के लिए जोर लगाएंगे मंडल के खिलाड़ी। मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल और बिजनौर के खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। 9 से 12 सितंबर तक बरेली में आयोजित होने जा रही प्रतियोगिता। चीन के मंच पर 11 नई तकनीक में हुनर दिखाएगा भारत। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 शंघाई में टीम स्किल इंडिया कुल 63 कौशल श्रेणियों में लेगी हिस्सा। सोने में तेजी का दौर थमा नहीं, 4 साल में 210% सोना महंगा। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी से दिवाली तक 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होने के आसार। सौ किलोमीटर का रनरअप लेकर फेंकी 7 लाख रुपए की गेंद। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस की दिवंगत पत्नी की याद में गिनीज बुक के लिए सैम ने किया कारनामा। भारत में छुआछूत के 891 मुकदमे लंबित, आधे उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में कोई केस नहीं, अस्पृश्यता कानून के तहत सजा अब तक किसी को नहीं, 13 आरोप मुक्त। 95 साल के बुजुर्ग के पेट में था कैंसर, छोटी आंत के जरिए बना दिया नया पेट। लोकनायक अस्पताल में चुनौतीपूर्ण सर्जरी सफल, 4th दिन ही चलने लगे बुजुर्ग। अब बात हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान ने लिखा है कि इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष

में स्थापित किया ब्रह्म नेत्र 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। ईओएस 5 उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप पर पैनी नजर और रियल टाइम तस्वीर भेजेगा। जनपद बिजनौर की जेल में कैदी हो रहे हाईटेक, कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहे। जिला कारागार में 52 बंदी ले रहे कंप्यूटर का प्रशिक्षण, 15 महिला बंदी भी कंप्यूटर सीखने में दिखा रही रुचि। प्रत्येक बीमा पॉलिसी की जानकारी एक ही जगह, इरडा ने सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री बनाने का प्रस्ताव रखा। पशु की किडनी से 9 महीने जिंदा रहा इंसान, पहली बार इतने दिन कोई व्यक्ति जिंदा रहा। अमेरिका के मैसाचुसेट अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल। छोटे बच्चों से भी ज्यादा बुजुर्गों की आबादी, अमेरिका के जनगणना विभाग ने पेश किए ताजा आंकड़े। 2060 तक दुनिया की आबादी करीब 10.23 अरब होगी, हर 5 में एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा। मिस वर्ल्ड के ताज पर निकिता की निगाहें, मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल 73वें मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का ताज पहन चुकी हैं। अब बात दैनिक जागरण अखबार से खास सुर्खियों की। दैनिक जागरण लिखता है कि अलनीनो के कारण फरवरी तक ढर्रे पर नहीं रहेगा मौसम, फरवरी तक परेशान कर सकती है गर्मी, कहीं अचानक तेज बारिश तो कहीं सूखा, सर्दियों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका, प्रशांत महासागर में बढ़ रहा सतह का तापमान। उत्तर प्रदेश में अधिक मानदेय पा रहे आउटसोर्स कर्मियों का नहीं घटेगा पारिश्रमिक, आउटसोर्स सेवा निगम ने 4 श्रेणियों में न्यूनतम पारिश्रमिक किए तय। आरबीआई दिसंबर से शुरू कर सकता है रेपो रेट में वृद्धि, यूनियन बैंक ने कहा रेपो रेट को 5.75 से 6% तक बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होगी महाटक्कर, पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का पलड़ा भारी, टूर्नामेंट में जीत के हैट्रिक लगाने उतरेगा भारत। और अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित उत्सवों की खबरों को सुर्खियों में लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां, और अब बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जिन्हें हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षक के रूप में देखते हैं, वे सदियों पहले इसी देश में, इसी भारत में आचार्य के रूप में देखे और पूजे जाते थे। वेदों और उपनिषदों के समय से ही गुरु शिष्य और आचार्य परंपरा का आधार रखा गया था। आचार्य वे होते हैं जो वेदों का मर्म समझाए और उत्तम आचरण की भी शिक्षा दे। दोस्तों, प्राचीन गुरुकुलों में आचार्य शिक्षा और दीक्षा के मुख्य केंद्र होते थे। आदि शंकराचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य, आचार्य चाणक्य इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में अद्वैत वेदांत के प्रचार के लिए देश के चारों कोनों में 4 मुख्य पीठों, या यूं कहें कि मठों की स्थापना की। इसके बाद सर्वोच्च गुरुओं को शंकराचार्य या आचार्य कहा जाने लगा। और आपको शायद यह हैरानी होगी कि सदियों बाद आधुनिक युग में भी लोग आचार्य चाणक्य की नीति के प्रति खासे उत्सुक होते हैं और आम जीवन में उसे समझना और जानना चाहते हैं। दोस्तों, गुरु शिष्य के जो परंपरा है, उस परंपरा को स्वस्थ बनाता है गुरु शिष्य के बीच उपजे सवाल और उनके सटीक जवाब।

0: इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे, इसमें शिष्यों के सवाल थे अपने गुरुजन के समक्ष, और गुरुजी ने बहुत सधे हुए अंदाज में हर एक शिष्य की सवालों का सटीक जवाब भी दिया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं। आमतौर पर आम व्यक्ति के जीवन में तीन शख्सियतें काफी पूजनीय होती हैं। पहला आराध्य इष्ट देव, दूसरे माता पिता और तीसरे शिक्षक। लेकिन संत कबीर ने शिक्षक का स्थान देवों से भी ऊपर माना है। संत कबीर का श्लोक तो आपको कंठस्थ ही होगा, गुरु गोविंदौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, वास्तव में जिस तरह अपने जीवन में हम अतिथि को देवता के समान स्थान देते हैं, यानी अतिथि देवो भव कहते हैं, उसी तर्ज पर हमें आचार्य देवो भव कहने में कोई गुरेज या कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और खास अवसरों पर अपने गुरुजनों का स्मरण और नमन वंदन हमें करते रहना चाहिए, जैसे कि आज शिक्षक दिवस है। आज हम याद कर रहे हैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। महान शिक्षाविद, विचारक, दार्शनिक, समाज चिंतक और भारतीयों के आदर्श डॉक्टर कृष्णन के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही की तारीख यानी 5 सितंबर साल 1888 को तिरुतन्नी तमिलनाडु में हुआ था, और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व आज इतने वर्षों बाद भी हमारा मार्गदर्शन करता है। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: इस संदेश के साथ आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। दोस्तों, जानकारियों के क्रम में आपको बता देते हैं कि इन दिनों देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और इस हफ्ते होती है संतुलित आहार पर चर्चा। दोस्तों, दैनिक जीवन में अगर हम अपनी थाली को संतुलित रखते हैं, जी हाँ, अगर हम अपनी थाली को संतुलित रखते हैं यानी पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं, उसमें हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन को शामिल करते हैं, और अपने खान पान में नमक, चीनी, अत्यधिक तेल या वसा की मात्रा को कम उपयोग करते हैं, तो यह हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। जी हाँ, और एक खास बात हमें और ध्यान रखनी होती है कि जंक फूड, पैक फूड को छोड़ना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जंक फूड और पैक्ड फूड के सेवन से प्यास कम हो जाती है। इनके प्रति निर्भरता और पानी की कमी हमारे स्वभाव को चिड़चिड़ा बना सकती है, और दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंचा सकती है। वहीं अपनी डाइट में अगर हम योगा प्राणायाम को शामिल कर लें तो यह न केवल उचित पोषण के रूप में हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेंगे बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य की डोर को मजबूत भी करेंगे। जी हां, हम ही नहीं हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। तो इस पोषण सप्ताह के आज के दिन हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक, एक सचेत नागरिक होने का अपना प्रमाण प्रस्तुत करें। और जो बातें हम आज आपके साथ साझा कर रहे हैं, अगर हम उसे अपने व्यवहार में ले आते हैं, अपनी दिनचर्या में ले आते हैं, अपने खानपान में ले आते हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक अनुकरणीय कदम होगा। हम अपने देश की अखंडता, उसके स्वास्थ्य, उसकी समृद्धि के लिए कम से कम इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। इस जानकारी के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से वक्त है एक संदेश का।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: जी हाँ, और आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से ही आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। दोस्तों, कार्यक्रम में अब क्रम है तिथि विशेष का। दोस्तों, यूं तो हमारे सभी के जीवन में हर एक दिन बहुत खास होता है और उस दिन में किए गए कार्यों को, उस दिन में मिली उपलब्धियों को हम याद भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो वक्त बीतने के साथ धुंधली हो जाती हैं, उन्हें हम फिर से तरोताजा कर देते हैं अपने कार्यक्रम के इस चरण में। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास उपलब्धियों से जुड़ी आज की तिथि की। दोस्तों, बलियप्पन उर्गनाथन चिदंबरम पिल्लई 1872 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जिले में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। उन्हें तमिल भाषा में सम्मान से कपलुत्या तमिलम, जहाज चलाने वाला तमिल भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश समुद्री व्यापार और एकाधिकार को चुनौती देने के लिए 1906 में भारत की पहली स्वदेशी शिपिंग सेवा शुरू की। बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्य भारती जैसे नेताओं के साथ मिलकर तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई और जेल में कोल्हू चलाने जैसी कठोर यातनाएं दी। 18 नवंबर 1936 को चिदंबरम पिल्लई का निधन हो गया। दोस्तों, 5 सितंबर 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक खेलों के दौरान एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था। ब्लैक सितंबर नामक फिलिस्तीनी आतंकी समूह ने इजरायली एथलीटों के निवास पर हमला किया। इस घटना में 11 इजरायली खिलाड़ियों और एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई थी। और दोस्तों, 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली बार महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई थी और ब्रिटिश हुकूमत के कठोर कानूनों और करों के विरोध में 12 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधि पहली बार एक साथ मंच पर आए थे। इस घटना ने अमेरिकी क्रांति की नींव रखी थी। और दोस्तों, आज एक और तिथि विशेष है। जी हां, आज है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को कम करने और परोपकारी कार्यों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए 5 सितंबर साल 2012 में इस दिन की विशेष तौर पर शुरुआत की। दोस्तों 5 सितंबर को ही इस दिन को मनाने का एक विशेष कारण ये भी है कि आज ही की तिथि में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। उनकी मानवीय सेवाओं को सम्मानित करने के लिए यह दिन चुना गया। हम सबको चाहिए कि समृद्ध समाज की स्थापना में हम अपनी ओर से हर संभव योगदान दें। अगर हम मदर टेरेसा के जीवन को पढ़ते हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को जानते हैं, तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कार्य हमें भी समाज सेवा, देश सेवा, यूं कहें वैश्विक सेवाओं को आगे बढ़ाने में हमें प्रेरित करती हैं, हमें जागरूक करती हैं। तो आइए आज के इस खास दिन पर हम संकल्प लें कि हम हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे और एक देश भावना के साथ, एक समाज को सुदृढ़ करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा देश, यूं कहें कि पूरी दुनिया सुखी और समृद्ध हो।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का अंक। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस कार्यक्रम को हम और भी बेहतर बना सकते थे तो आप अपने सुझाव हमें हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। कल आपसे पुनः भेंट होगी कुछ और प्यारे प्यारे से फिल्मी गीतों और कुछ खास जानकारियों के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। तब तक आप आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए कि सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए कदम कदम पर शिक्षक हैं। नमस्कार।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
6: India believes that endless war.
7: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
6: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
9: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
10: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
11: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
12: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
2: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
13: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय साह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

अभी आपने सुना गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में फिल्म गृहस्थी का प्यारा सा गीत, जिसे लिखा शकील ने और संगीत दिया रवि ने। और दोस्तों देखिएगा, गीत में एक बात कही कि दिल को संभालो मेरा दिल चला। दोस्तों दिल कहाँ चलता है, चलते तो कदम हैं, दिल तो अपनी जगह ही होता है, लेकिन ये दिल एक तरह से गतिमान भी होता है। होता तो हमारे पास है, लेकिन उस दिल को महसूस कोई हमारा अपना कर रहा होता है।

हम सब चोर हैं। इस फिल्म के गीत को अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। और अब घड़ी इशारा कर रही है एक संदेश की ओर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दोस्तों, दिल की चाल की बात हमने की कि दिल तो एक जगह स्थिर रहता है, हमारे पास होता है, लेकिन वो इतना गतिमान होता है, इतने चलन में होता है कि वो होता तो एक जगह है लेकिन घूमकर वो पूरी दुनिया आ जाता है और लुत्फ उठा लेता है हर तरह के मौसम का। तो जैसा अब इस समय मौसम है बरसात का, तो इस बरसात के मौसम में आप देखते होंगे कि हिरनी की चाल जो होती है वो काफ़ी मदमस्त कर देती है, दिल को भा जाती है और कई तरह की उपमाएं दी जाती हैं हिरनी का चाल पर। अब इस चलने पर ही करते हैं इस प्यारे से गीत में एक प्यारी सी बात।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म प्यासा सावन का गीत। इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम पूर्णिमा। गीतकार भरत व्यास और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दोस्तों, वक्त कभी एक जगह नहीं ठहरता है, रफ्ता रफ्ता बीत जाता है। और देखिएगा, इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें सावन की बात आई। और देखिए, समा तो इस समय भाद्रपद का है, यानी भादों के महीने का है, लेकिन मौसम जो है वो कई जगहों पर बारिश की झड़ी लगी है और सावन की झड़ी अक्सर लोग कह दिया करते हैं। लेकिन फिर वही बात के वक्त कभी एक जगह नहीं ठहरता है, हर पल हर दिन ये वक्त बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं।

0: दूर की आवाज़। इस फिल्म के गीत को अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत रवि का। और देखिएगा दोस्तों, वास्तव में सफ़र तो कट ही जाता है, भले ही तनहा हो या किसी के साथ हो। बस फ़र्क केवल इतना है कि जब सफ़र किसी के साथ होता है तो यादगार होता है।
1: किधर उसको तरसे अखियाँ।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म प्राइवेट सेक्रेटरी के इस गीत में, जिसे लिखा प्रेम धवन ने, संगीत दिया डी दिलीप ने। और श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म का नाम हमदम। आवाजें महेंद्र कपूर और सुरेश वाडेकर की, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत घनश्याम प्यारे का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। अब आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।
1: और जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का।
1: रिमझिम फुहारों के बीच सावन के इस माह में 12 रबीउल अव्वल व रक्षाबंधन जैसे त्योहारों ने माहौल को बेहद खुशगवार बना दिया। सावन के चारों सोमवारों को शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। विशेषकर कॉरिडोर की घोषणा के बाद रोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और अतः भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुँचते रहे। दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के उरई, जालौन, झांसी तो बिठूर, कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में कैंप लगाकर कांवड़ यात्रियों की जांच और सुविधाओं का ख्याल रखा गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए बताया, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर पूरा जनपद सजावट और रोशनी से चमक उठा। जगह जगह जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया। खासकर नगर क्षेत्र में निकाला गया मदे सहाबा का जुलूस विशेष आकर्षण रहा। धनोका स्थित हनुमान मंदिर के पास व्यापार मंडल प्रदीप जैन व महामंत्री रविनंद खजांची के नेतृत्व में व्यापारियों ने जुलूस का स्वागत कर साझा संस्कृति को प्रदर्शित किया। रक्षाबंधन का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को उपहार स्वरूप प्रदान की गई बस सेवा से उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय करपिया मसौली की बालिकाओं ने जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह से आत्मीय मुलाकात की और हाथों से बनाई गई राखी उनकी कलाई पर बांधकर भाई बहन के स्नेह का भाव साझा किया। इस माह घाघरा नदी का जलस्तर कई बार खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा और ग्रामीणों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी। इस माह जिले से गुजरी घाघरा सरयू नदी पूरे उफान पर चल रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उसी को लेकर के बाराबंकी जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने गत दिनों रामनगर तहसील क्षेत्र के हेतमापुर बंदे के पास में स्थित बाढ़ पीड़ित शरणालय में प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने 500 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। प्रभारी मंत्री ने नदी के किनारे बसे लोगों से मौके पर जाकर हालचाल जाना और उन्हें सरकार के द्वारा हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विगत दिवस विकासखंड बंकी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पलिया मसूदपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की तथा शिक्षण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में मिलने वाले मिड डे मील के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने विद्यालय की रसोई का निरीक्षण कर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में ही स्थित आंगनबाड़ी केंद्र व आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण कर वहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाराबंकी पहुंचे प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि बाराबंकी में विरासत और विकास की यात्रा प्रगति पर है। इसमें जन सूचना अधिकारियों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने रामनगर निरीक्षण गृह में कहा कि यहां विरासत को सम्मान मिल रहा है, इसमें सांस्कृतिक गौरव की अनुभूति है। राज्य सूचना आयुक्त ने रामनगर स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि जनपद को करीब 500 करोड़ रुपयों की योजनाओं की सौगात मिली। प्रदेश सरकार स्टेट कैपिटल रीजन NCR के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB लखनऊ द्वारा बाराबंकी के पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन लोकसभागार में किया गया। कार्यशाला में फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग तथा डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के साथ केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। PIB लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल ने कहा कि फेक न्यूज एक वायरस की तरह है जो तेजी से फैलती है और समाज को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में तथ्यों के स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है और फेक न्यूज को फैलाने से रोकने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी शांत प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के

0: 1609 गांव में पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि
1: मिर्जापुर में 9 स्कीम्स चल रही हैं जल जीवन मिशन के तहत, जिसके अंतर्गत अलग अलग ब्लॉक में कुल 1609 गांव में पेयजल की सप्लाई है वो सुनिश्चित की जा रही है।
0: मिर्जापुर जिले में एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं 1 सितंबर को सुबह से पूरे दिन हुई बारिश के नगर के कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढा युक्त सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों की सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन सवारों के गिरने और चोटिल होने का खतरा बढ़ गया है। जिले में करीब 15.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नगर की कई सड़कों के किनारे पानी जमा होने से पैदल चलने वालों को भी मुश्किल हो रही है। बारिश और तेज हवा से पक्षियों के प्राकृतिक आश्रय भी प्रभावित हुए हैं। पेड़ की डालियों और खुले स्थानों पर पानी भरने से पक्षियों को सुरक्षित ठिकाना तलाशना कर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के अंदर बने बिलों में पानी भरने के कारण सांप बिच्छू समेत अन्य जहरीले जीव सूखे स्थानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भी भय बना हुआ है। लगातार बारिश से खेतों और निचले इलाकों में पानी भरने के कारण ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। पशुपालकों का कहना है कि बारिश लंबी खींचने पर चारे और पशुओं को सुरक्षित रखने की समस्या और गंभीर हो सकती है। मिर्जापुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। गत दिनों नगर के फीटी क्लब में प्रधानमंत्री दिव्यांग वरिष्ठ केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री दिव्यांग वरिष्ठ केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, उनका आकलन करने तथा पहले से वितरित उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे लाभार्थियों को सहायक उपकरणों के लिए दूर दराज जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने इस पहल को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी के दिव्य धाम में विगत दिनों भारतीय शास्त्रीय कला सुर लय की साधना संपन्न हुई। सुर लय के इस साधना पर्व पर रसिक जनों ने भरपूर आनंद उठाया। भारतीय सनातन कला एवं गुरु शिष्य परंपरा के समर्थन हेतु समर्पित महेश्वर साधना ललित कला प्रशिक्षण केंद्र विंध्य रत्न स्मृति से पंडित महेश्वर पति त्रिपाठी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शास्त्रीय संगीत समारोह का परंपरागत गरिमामय 9वां आयोजन माँ विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में वंदना अर्पण के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार ने समारोह की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का गौरव बताया। आध्यात्मिक लेखक फलील पांडे को परंपरागत सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजकों ने अतिथियों को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किया। रिपीट समारोह में देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों से पधारे कलाकारों ने अपनी अलौकिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। शास्त्रीय गायन काफी की सुप्रसिद्ध गायिका अलंकृता राय ने अपने सुमधुर और गंभीर शास्त्रीय गायन से वातावरण को भक्तिरस से सरोबार कर दिया। मिर्जापुर में भारी बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी से जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलियों और रपटों पर पानी भर जाने से आवागमन में असुविधा हो रही है। गंगा नदी उफनाई हुई है। वैसे तो जिले में गंगा का जल खतरे के निशान से अभी 2 मीटर दूर है, लेकिन गंगा में बढ़ाव के चलते जिले के निचले स्थानों पर बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। गंगा के जल स्तर की मॉनिटरिंग कराई जा रही है। अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आज सुनते हैं लोक कलाकार भुवनेश गिरी की आवाज में रागिनी। लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये पहली रागिनी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं भुवनेश गिरी की आवाज़ में रागनी। श्रोताओं, इस रागनी के बाद लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये एक और रागनी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं लोक कलाकार भुवनेश गिरी की आवाज़ में रागिनी। लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये अंतिम रागिनी।

भुवनेश गिरी की आवाज में गाई इस रागनी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आपने सुनी लोक गायक भुवनेश गिरी की आवाज में रागनी। मीडियम वेव

314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजे, क्षमा कीजिए, प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपके लिए है, आप ही के लिए है, क्योंकि इस कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों के माध्यम से और सुनते हैं अपनी पसंद के कुछ फिल्मी नगमे। तो दोस्तों, इस क्रम को हम शुरू करने से पहले अपने उन श्रोताओं को इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर भी बता दें, ताकि जो नए श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो भी अपनी पसंद का गीत सुन सकें और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, यानी 9457078288। और श्रोताओं, पत्रों के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो जो पत्र हमें इस कार्यक्रम से पूर्व तक प्राप्त हुए थे वो तो हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिए हैं, लेकिन अगर आप भी पत्रों के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे इस कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो श्रोताओं, चलिए मेरे साथ यानी आपके अपने रेडियो मित्र चरणजीत सिंह के साथ जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में और लीजिए गीत संगीत का आनंद और साथ ही जुड़िएगा अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस व्हाट्सएप मैसेज के साथ, जो कि हमें प्राप्त हुआ है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। लिखने वाले रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और छाबड़ा परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज नई बस्ती पैतई खालसा जिला अमरोहा से हमें मिला है। बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी का। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कणु घाटी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से। लिखने वाले हैं इंदु नौटियाल, योगेश चंद्र नौटियाल, कनिका नौटियाल, कार्तिक नौटियाल, जस्सू नैथानी, पुनीता गौड़, मीनाक्षी डबराल, सुषमा, पूनम भारद्वाज और इनके परिवार के अन्य सदस्य। एक ये हमें मैसेज मिला है कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से, यही मैसेज। और लिखने वाले हैं सरोज आर्य, अनिल सिंह नेगी, संजय चौहान, डीएस नेगी, संदीप जॉन, महेंद्र कुमार और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हमें मिला है जयवीर रावत, प्रशांत नेगी, दिनकर बड़थवाल, प्रवीण नौटियाल, रजनी नौटियाल, अन्वेषा नौटियाल, वेदांश नौटियाल का। और इनके साथ मैसेज करने वाले हैं हीरा सिंह रावत, आशीष बिस्ट, अजय सिंह, मोनू सिंह, मनोज रावत और ये सब भी हमें मैसेज कर रहे हैं कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से और सुनना चाह रहे हैं अपनी पसंद का यह गीत।

दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम खुद्दार। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत राजेश रोशन का। और दोस्तों, कल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और अभी भी कई जगह उल्लासपूर्ण कार्यक्रम जारी ही हैं, इसलिए संभवतः हमारे श्रोताओं ने ये गीत ज़रूर सुनना चाहा होगा। तो चलिए अब इस कार्यक्रम में फिर से बढ़ते हैं आगे और अपने कुछ और श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तो ये मैसेज हमें मिला है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ साबरी का। गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से हमें मैसेज भेज रहे हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचा है लाल माता सुदामा नगर रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से भेजने वाले हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से मैसेज भेज रहे हैं मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम, नाज, सरिता गौतम और ये मैसेज भेजा गया है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, सिया जाधव और ये मैसेज में शामिल किया है जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव और ओम जाधव को। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। जनपद बिजनौर के नगीना से हमें मैसेज लिख रहे हैं अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, गीत अरोड़ा, सहज अरोड़ा और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज हम तक पहुंचा है और लगातार मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं। बस हम एक रिक्वेस्ट अपने श्रोताओं से ये करेंगे कि आप रिपीट मैसेज ना करें, आप अपने अन्य साथी श्रोताओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का पूरा मौका दें। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी, रिया रेणु एवं रोनिका यादव ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है आकोट विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए के, संजीव डाबेराव ने हमें मैसेज लिख भेजा है। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से मैसेज लिख रहे हैं सईद भाई, सुफियान, अनस, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। और ये मैसेज कस्बा गुनौर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी और प्रकाशवीर राजपूत ने लिखा। ये मैसेज डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया ने हम तक पहुंचाया। शनि चौक खंडवा से पिंकी, मिंकी, शिंकी और रिंकी ने ये मैसेज लिखा है। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। बीजना मुरादाबाद से मैसेज भेजने वाले हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूसुफ, यूनुस खान, सोफिया खान ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है।
रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, बीरमगाम सिटी से अजीत मेहरा और सुनीता मेहरा ने मैसेज लिखा है। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा, विजय और अनुश्री ढींगरा ने मैसेज लिख भेजा है। बिलाईगढ़ से देव डूकर, तुषार और अजय देव डूकर ने भी हमें मैसेज लिखकर अपनी पसंद का गीत सुनाना चाहा है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमृत ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख ने मैसेज लिख भेजा है और ये मैसेज गांव दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून का मैसेज है और सुनना चाहा है अपनी पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों, ये एक प्यारा सा गीत जो आपने अपनी फरमाइश का सुना है, उसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम अनोखी रात, गीत कैफ आज़मी का लिखा था और संगीत रोशन ने दिया था। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ चुकी हैं हमारी आज की साथी।
1: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को अनुपम का नमस्कार।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप बने रहिएगा, फिलहाल रुकते हैं एक संदेश के लिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और श्रोताओं ये कार्यक्रम आपका है, आप ही के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ जाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। तो हम मैसेजेस को पढ़ने का क्रम फिर से करते हैं जारी, लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर से ये करना चाहेंगे कि आप मैसेज रिपीट ना करें। तो ये मैसेज हमें मिला है कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, सहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपिसानी, मोहम्मद अफजल मलिक और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
2: कार्यक्रम का अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, तहसील रोड गंजरुंडवारा से आया है के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील का।
1: जी हाँ, और ये अगला मैसेज हमें मिला

0: अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
1: और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है सैयद खलील मुबीन, एमडी यासीन, मूसा करीम, शेख सलीम, और ये मैसेज भेजा गया है नेहरू पार्क, निज़ामाबाद, तेलंगाना से। फुलोंग, निज़ामाबाद, तेलंगाना से एम ए वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़सी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फ़ुरकान, मोहम्मद ज़ाकिर, मोहम्मद फ़ाज़िल ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। और ये मैसेज हमें मिल रहा है
0: ये है
1: कहाँ?
0: मोहल्ला हलवायान, शेरपुर जिला बिजनौर से। हमारे श्रोता हमें कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। साथी हैं बिलराम गेट कासगंज से एम अशरफ सैफी।
1: जी हाँ, और ये अगला मैसेज हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
0: जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेजते हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप।
1: और ये मैसेज हमें मिला है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, गांव दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से।
0: मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेजा है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने।
1: जी हाँ, और ये मैसेज गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद ने हमें लिख भेजा है। और ये अगला मैसेज अनुपम।
0: ये है मारहेरा दरवाजा एटा से हमारे श्रोता नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रशीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान।
1: पटियाली रोड, गंज, डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, अरिबा हबीबा, इमरान खान ने हमें मैसेज लिख भेजा है। और ये मैसेज
0: और इसी गीत को फरमाइश, गीत के लिए फरमाइश हमें भेजते हैं हमारे ये श्रोता।
1: जी, इन्होंने लिख भेजा
0: ये
1: है
0: है हमारे
1: जी, ये
0: श्रोता।
1: रिपीट
0: जी
1: मैसेज
0: हाँ, ये
1: लिखिएगा, ये
0: रिपीट मैसेज है
1: मैसेज
0: ये।
1: अनुपम हमें रिपीट
0: जी
1: मैसेज
0: हाँ
1: मिला है।
0: श्रोताओं, कृपया आपसे निवेदन है कि आप दोबारा मैसेज ना करें ताकि हमारे जो अन्य श्रोता हैं उनको कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके।
1: और ये मैसेज
0: ये है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंडूरकर, सदानंद मंडूरकर और कुमार गौरव मंडूरकर
1: तो
0: का।
1: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो दोस्तों ये गीत आपने सुना, कुली नंबर वन फिल्म का गीत था ये, और इसे आवाज़ें दी चंदना दीक्षित और अभिजीत ने, संगीत आनंद मिलिंद का और गीत समीर ने लिखा था। और अब इस कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं अपने उन श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं और भेजना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप मैसेज हम तक, तो आप भेज सकते हैं 9457078288 यानी 9455078288 पर। और अब इस कार्यक्रम का ये अगला मैसेज अनुपम शामिल कर रही हैं।
1: हाँ, ये मैसेज हमें मिला है बटुहिया श्रोता, ये हैं श्रोता हैं हमारे रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वंशल राजपूत, कुहू राजपूत। इन्होंने ये मैसेज हमें भेजा है गांव बेर थाना शिवाला कला जिला बिजनौर से।
0: जी हाँ, और ये मैसेज हमें मिला है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम।

0: कुंवर अनुश्री श्याम कुमार का।
1: ये हमारे श्रोता हैं ग्राम गाधरौना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदनगिरी, बिमलागिरी, भरतगिरी, सोनियागिरी, बलरामगिरी, मधुगिरी, सिमरनगिरी, गोविंदगिरी, वंशिकागिरी और रमनगिरी, साथ में है दिव्यगिरी।
0: जी हाँ, और ये मैसेज नाला सोपारा मुंबई महाराष्ट्र से बेगम नजमा शेख, रूमा शेख, आसिफ शेख, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख, मोहम्मद कलीम ने ये मैसेज लिखा है। और ये अगला मैसेज
1: MJM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से हमें मैसेज भेजते हैं डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता सहानी और शनाया इब्राहिमी, साथ में हैं बरकाकाना से अफजल इब्राहिम, नाजनी तबस्सुम और इफ्तिखार इब्राहिमी।
0: और ये मैसेज जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी ने हमें लिख भेजा है।
1: आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा।
0: ये मैसेज आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, लवा खान, मसलम सैफी, जाहिदा अली ने लिख भेजा है परिमहल कासगंज से।
1: ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेजते हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: ये मैसेज पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का हमें प्राप्त हुआ है।
1: भोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत,
0: और
1: साथ
0: पाकुड़,
1: में
0: जी
1: पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत और श्वेता भगत, साथ में हैं अर्णव और सत्यम आनंद।
0: जी हाँ, और ये मैसेज हमें मिला है सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षता देशमुख। और ये भेजा गया है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। और ये मैसेज हमें मिला है जगदीश सिंह मठाड़ू, वीरपाल कौर मठाड़ू, मोगा पंजाब से हमें मैसेज लिख भेजा है।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज भेजते हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और ये मैसेज संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, जस्वी यादव ने हमें लिख भेजा है। इसके साथ ही लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने मैसेज लिखा है।
1: सब्जी मंडी बुलडाना से हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन।
0: ये मैसेज रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिला नाचानी, प्रगति नाचानी ने भेजा है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से। ये मैसेज हमें मिला है। और ये अगला मैसेज है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
1: कवाई बारा राजस्थान से हैं हमारे साथ सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव।
0: और ये मैसेज हमें मिला है रेलगाड़ी श्रोता टोली नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, महबूब सैफी, मोहम्मद यूसुफ, विनय कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फरमान। और ये मैसेज अंश टोंक, देव टोंक, साकेत टोंक, राजेंद्र ने हमें लिख भेजा है बुंदकी रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर से। और सुनना चाह रहे हैं अपनी पसंद का कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म रोटी का ये गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: इस संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और ये कार्यक्रम में आप सीधे जुड़ जाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से। हम एक बार फिर से बताते हैं अपने उन श्रोताओं को इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेज का नंबर जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो आप नोट कर लीजिए 9457078288 यानी 9457078288 पर। और ये गीत सुनने के लिए हमें मैसेज भेज रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से लिख रहे हैं राज एस डी अंसारी और फातमानाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा ने हमें मैसेज लिख भेजा है।
2: नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। साथ में मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुहिरकर।
1: और ये मैसेज हमें लिख भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी के साथ अब्बासी परिवार के पूरे सभी सदस्यों ने, और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज हमें लिख भेजा है।

0: गणेश अबिका आर्ट श्री रामपुर से हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं डी अशोक कुंभार, अबिका जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अबिका सोनवड़े और साईशा सोनवड़े।
1: जी हाँ, और ये मैसेज है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले का पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अमिका सोनवने, विशाखा सोनवने ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है। और छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा ने भी मैसेज लिख भेजा है। और ये मैसेज
0: ये है हमारे श्रोता गांव हिपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख।
1: ये मैसेज रिंगनी छत्तीसगढ़ से देखिएगा, ये भी रिपीट हुआ है हमें। आप रिपीट मैसेज ना करें और हम अगला मैसेज पढ़ते हैं। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अरुण जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल ने हमें लिख भेजा है। और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमें मैसेज लिख रहे हैं।
0: कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
1: मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर ने हमें मैसेज लिख भेजा है।
0: विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन।
1: और ये मैसेज सत्यदेव कुमार राणा, विष्णु कुमार राणा, इस्लाम नगर पबसरा, जिला बदायूं से हमें मैसेज लिखा गया है।
0: मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा मलिक और साथ में है माही मलिक।
1: और ये मैसेज मोहम्मद, देखिए ये भी रिपीट हुआ है। हम अपने श्रोताओं से बार बार कह रहे हैं कि आप मैसेज रिपीट ना करें। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग ने मैसेज लिख भेजा है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से। और ये मैसेज कहाँ से है?
0: ये है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडार से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
1: रेखा भाई इंदूरकर नेशनल पार्क तालुका चिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से ये मैसेज हमें लिख भेजा है। और ये हैं कुमार गौरव, इंदूरकर रायबान इंदूरकर ने हमें मैसेज लिखा है। और ये मैसेज जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का पहुंचा है हम तक। और ये कहाँ से है अनुपम?
0: ये है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी।
1: तो चलिए सुनते हैं अपने इन श्रोताओं के पसंद का ये गीत।

0: ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। गीत रचना असद भोपाली की थी और संगीत राम लक्ष्मण ने दिया था। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं उस क्रम की ओर जिसका आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। जी हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं आपके उन पत्रों को जो इस कार्यक्रम से पहले हम तक पहुँच चुके थे।
1: जी हाँ, और ये पत्र हम शामिल कर रहे हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी का, जो कि हमें भेजा है दौलत बाग मुरादाबाद से।
0: और ये पत्र हमें मिला है एहसान अली बागपत उत्तर प्रदेश से।
1: ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से हमें पत्र भेजते हैं हमारे ये श्रोता राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, सायना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
0: ये पत्र हमें मिला है मोहम्मद मोहल्ला अफगानान शेरकोट जनपद बिजनौर से। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, आदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
1: कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से ये पत्र हमें भेजा है अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य ने।
0: ये पत्र हमें मिला है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से। लिखने वाले रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी।

0: बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। और ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नवेद खान और सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का ये पत्र हम तक पहुंचा है।
1: एक पत्र और हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो कि हमें मिला है अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा का।
0: जी हाँ, और ये पत्र हमें मिला है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन निसा, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। और ये पत्र कहाँ से है?
1: ये है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का।
0: श्रोताओं के पत्र भी हमें काफ़ी सारे यहाँ मिले हैं और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम में पत्र शामिल करने के लिए पता, तो आप भेज सकते हैं अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए पत्र हमें इस पते पर, कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467 63। तो श्रोताओं हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार, व्हाट्सएप मैसेज भी हमने काफी शामिल किया, हालांकि कुछ मैसेज हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं,
1: शामिल करने से रह गए हैं।
0: लेकिन हम अपने श्रोताओं से इस बात के लिए कहना चाहेंगे कि अपना स्नेह, अपना प्यार आप हमारे साथ इसी तरह बनाए रखिएगा और व्हाट्सएप मैसेज करते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि हमारे आने वाले कार्यक्रमों में आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल किया जाएगा और सुनवाए जाएंगे आपको आप ही की पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से फिल्मी नगमे। फिलहाल इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: तो श्रोताओं, फिल्म बंटी और बबली के इस प्यारे से गीत जिसे आवाज़ें दी शंकर महादेवन, सौम्य रॉय और लॉय ने, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब मुझे यानी चरणजीत सिंह और मेरी साथी
1: अनुपम को दीजिएगा इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म में कभी कभी से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत था खयाम का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब लता मंगेशकर के ही स्वर में फिल्म गीत का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और उन्हें संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आशा का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आशा का ये गीत लता मंगेशकर के सर में, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म नदिया के पार का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

नदिया के पार। श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। आइए सुनते हैं फिल्म मजबूर का ये नगमा। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे थे फिल्म मजबूर में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और उसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार के साथ आशा भोसले को फिल्म जैसे को तैसा में। शब्द रचना आनंद बख्शी।

जैसी को तैसा। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था आरडी बर्मन का। आइए सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म वक्त का ये गीत। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

श्रोताओं, फिल्म वक्त का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और उसे संगीतबद्ध किया था रवि ने। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। गीत को अपनी कलम से सजाया है संतोष आनंद ने और उसको सुर प्रदान किए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। शब्द रचना संतोष आनंद की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म निकाह का ये गीत। गीत लिखा है हसन कमाल ने और संगीत दिया है रवि ने।
1: अभी अलविदा मत कहो।

जी हाँ श्रोताओं, एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद बीते हुए लम्हों की जो यादें हैं वो हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। हर बीता हुआ कल एक सुनहरी याद बन जाता है जो कि हमें हमेशा याद रहता है। तो महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म निकाह का ये गीत। गीत लिखा था हसन कमाल ने और संगीतबद्ध किया था रवि ने। और श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म अपनापन का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। ये बिल्कुल सच है श्रोताओं, आदमी मुसाफिर ही है, पता नहीं कब उसे यहाँ से जाना पड़ जाए वो खुद भी नहीं जानता। इसलिए जितना भी वक्त हमारे पास है उसे सबके साथ प्यार से खुशी के साथ मनाएं, कभी किसी को दुख ना दें। जब तक इस दुनिया में है यही कोशिश करें कि हम लोगों की मदद करते रहें ताकि हमारे जाने के बाद लोग अच्छे शब्दों के साथ हमें याद करें।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोता हूँ आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। संध्या 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर आप सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5:15 पर खास क्रम रहेंगे गीत आपके नाम, बूस्टर्स और बात एक काम की। शाम 7:32 पर सुगम संगीत में सुनिएगा परवेज मेहंदी की आवाज में चंद गजलें।

दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज गीतकार होंगे कुमार। कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनिएगा विविध कलाकारों के स्वर में लोकगीत। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षक शिष्य संबंधी विचार। साथ ही क्रम मेरी पाकशाला के अंतर्गत मनस्विता त्यागी से प्रियंका त्यागी की टेलीफोनिक बातचीत भी सुनवाई जाएगी।

श्रोता हम आपको पुनः याद दिला दें, संध्या 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फिल्म से और गीत संध्या का समय रहेगा रात्रि 8:30 और 8:00। और श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं अनुपम मिश्रा। श्रोताओं कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और हमेशा की तरह आज भी एक बेहद रोचक विषय के साथ कार्यक्रम में हम हाजिर हैं। आज का दिन बहुत खास है साथियों, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी विषय पर आपसे बातचीत की जाए। आज है 5 सितंबर और हर साल इसी तारीख को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। 5 सितंबर वर्ष 1888 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो कि एक महान शिक्षाविद भी रहे हैं। तो श्रोताओं अब जल्दी से आपको बता देते हैं आज आपसे हमारी बातचीत का विषय। तो हमारा आज का विषय है जीवन में गुरु की भूमिका। तो इस बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेज करके। और व्हाट्सएप मैसेज के लिए हमारा नंबर है 9457078288, 9457078288। तो श्रोताओं ये कार्यक्रम आपके संदेशों से ही अच्छा बनता है, तो हमें आपके संदेशों का रहेगा इंतज़ार। उम्मीद है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठा लिया होगा और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ टाइप करने शुरू कर दिए होंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ श्रोताओं, जीवन में गुरु का स्थान बेहद अहम होता है। गुरु वो व्यक्ति है जो हमें ज्ञान, संस्कार और सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। गुरु के बिना जीवन अधूरा और दिशाहीन होता है। अज्ञान का तमचीर कर जो ज्ञान का दीपक जलाए, वही सच्चा गुरु।

जी हाँ श्रोताओं, ये काम हमारे गुरुजन ही करते हैं। हमको सही राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे मन को नई शक्ति और ऊर्जा से भर देते हैं। जो काम हमें असंभव लगता है वो गुरुजनों के कह देने भर से संभव होने लगता है। मिट्टी के कच्चे घड़े को जो सुंदर आकार देता है, अपनी प्रेरणा और स्नेह से जीवन को सार्थकता देता है। तो श्रोताओं, गुरु न केवल हमें शुरुआती ज्ञान देते हैं बल्कि वो हमें जीवन मूल्य भी सिखाते हैं, हमारे भीतर साहस का संचार करते हैं ताकि हम जीवन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें। गुरु का आशीर्वाद और शिक्षा हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और समाज में हम सम्मान पाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें और जो राह उन्होंने हमें दिखलाई है उस पर हम चलते रहें और जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि वो हम पर गर्व महसूस कर सकें। सही मायने में देखा जाए श्रोताओं, तो हमारे गुरुजनों में कहीं ना कहीं हमारे माता पिता जैसी ममता और वात्सल्य भी छुपा होता है।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और श्रोताओं, आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जीवन में गुरु की भूमिका विषय पर। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। और हमारे श्रोता हमें मैसेज भेज रहे हैं, तो कार्यक्रम का पहला मैसेज हमने लिया है महेंद्र कुमार शर्मा जी का, जो कि सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं सीडी इंटर कॉलेज हल्दौर के। ये लिखते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, हो विरंची शंकर सम हुई, यानी गुरु के बिना जीवन अधूरा है। बिल्कुल, गुरु के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छे बुरे सही गलत का जो भेद है वो गुरु ही बताते हैं। गुरु के बिना जीवन यात्रा अधूरी है, इसलिए गुरु को भगवान कहा जाता है। उनकी सीख हमें सफलता दिलाती है। जब से धरती बनी है श्रोताओं, तब से ही गुरु का महत्व इस दुनिया में है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ आदि में महान संतों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। कम शब्दों में कहा जाए तो शिक्षक जीवन का दिया वो उपहार है जो हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव के सही गलत अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ईश्वर के दिए इस अनमोल उपहार का हम सदैव सम्मान करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव इस समय आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत का हमारा विषय है जीवन में गुरु की भूमिका। और इस विषय पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मैसेज भेजे हैं और उनमें से हम ये मैसेज कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो कि हमें मिला है ग्राम

अपना गुरु मान लिया था, मन ही मन मान लिया था, उनकी मूर्ति को बनाकर उस मूर्ति के सामने ही वो अभ्यास किया करते थे और एक कुशल धनुर्धर बने थे। अर्जुन के विषय में भी यही कहा जाता है कि उनके सर पर भी गुरुओं का हाथ था। हमारे राम कृष्ण सभी गुरुओं की सही शिक्षा लेकर महान बने हैं और आज हम सब उनकी पूजा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बिना गुरु की शिक्षा के कोई महान नहीं बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने 100% ये सही बात कही है कि बिना गुरु के कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। गुरु का हमारे जीवन में होना ऐसे है जैसे कि हम किसी नाव में सवार हैं लेकिन हमारे हाथ में पतवार नहीं है। देश और समाज को जिम्मेदार नागरिक बनाने का काम श्रोताओं शिक्षक ही करते हैं। माता पिता के बाद गुरुजन ही होते हैं जो बच्चों में संस्कारों और नैतिकता के बीज रोपते हैं। श्रोताओं, एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन से उनका जन्मदिन मनाने की उनके छात्रों ने जिद की थी तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। और श्रोताओं, उसके बाद से ही 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और महान शिक्षाविद को याद करते हैं। और बिल्कुल सही है कि अगर जीवन में एक सच्चे गुरु का साथ है अगर हमारे पास, तो फिर हम जीवन की किसी भी जंग को कभी हार ही नहीं सकते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी एक जंग है और उस जंग में एक सच्चा साथी है हमारा जो गुरु है, हमारा जो मार्गदर्शक है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे स्कूल या कॉलेज के हमारे कोई टीचर हों, वो हमारे कोई मित्र, माता पिता, भाई बहन, निकट संबंधी कोई भी हो सकते हैं। तो कार्यक्रम में अब हम शामिल करने जा रहे हैं एक और मैसेज जो कि मिला है हमें मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान हमें गुरु ही बताते हैं कि हमें कौन सा काम कैसे करना है। जी हाँ बिल्कुल, जो हमारा एक कहते हैं ना कि नीर छीर विवेक, वो हमें गुरु ही प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये हमारे श्रोता हैं मोहल्ला हलवायान, कस्बा शेरकोट, ज़िला बिजनौर से। आपने सिर्फ कार्यक्रम में नाम लिखे हैं शामिल होने के लिए, और इसके ऊपर आपने हाँ एक मैसेज लिखा है कि हमारे गुरु माँ बाप से बढ़कर होते हैं, वो हमें सही शिक्षा देते हैं और सही गलत का ज्ञान भी कराते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ वो हमारी जो जीवन की दिशा है उसको तय करते हैं और

मायने में देखा जाए श्रोताओं, तो शिक्षक दिवस धन्यवाद का दिन है, जब हम हमारे जीवन को आकार देने वाले गुरु रूपी कुंभकार को याद करते हैं और उनकी सीख को जीवन भर अपने साथ लेकर चलने का संकल्प करते हैं। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहने का मतलब यही है श्रोताओं कि गुरु अनमोल होते हैं, उनका मोल हो ही नहीं सकता। गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। और श्रोताओं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने आपको उस वक्त पे सहारा दिया हो जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिर गए हो, कोई राह आपको सूझ ना रही हो, ऐसे में उन्होंने आपको सहारा दिया, आपको सलाह दी और आप उस मुश्किल से बाहर आ गए? अगर कोई ऐसा अनुभव आपके साथ कभी रहा है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं एक और गीत।

जी हाँ श्रोताओं, और आशा बांधने का काम करते हैं कौन? जी हाँ, हमारे गुरुजन। जब हम बहुत निराश परेशान होते हैं और ऐसे में अगर हम किसी गुरु जैसे व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं, तो वो हमें एक रास्ता बताते हैं जिससे कि हमारे अंदर एक आशा का संचार होता है और हम एक नई स्फूर्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं अब एक और मैसेज जो कि हमें मिला है ग्राम बा पोस्ट राहुल नगली से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आचार्य सत्यवीर सिंह जी। ये लिखते हैं कि सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शिक्षक मानव के जीवन में सबसे बड़ा स्थान रखता है। गुरु का स्थान वो होता है जो ईश्वर भी नहीं ले सकते। कबीर दास ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गोविंद से मिलाने का काम भी गुरु ही करते हैं और गुरु ही होते हैं जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल सत्यवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल कम शब्दों में और बहुत ही सार्थक बात कही है कि गुरु वही है जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। लिखते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना गुरु के कोई भी काम हमारे लिए संभव नहीं होता। और अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें उस काम को करना कैसे है या फिर उसमें जो कुछ मुश्किलें आ रही हैं उन्हें कैसे दूर करना है, ये हमें हमारे गुरुजन ही बताते हैं। तो इसलिए हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हमें कभी भी अपने गुरुजनों को भूलना नहीं चाहिए, उनकी शिक्षाओं को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और एक और है हमारे श्रोता, ये मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, ये हैं ग्राम दूल्हापुर ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि अच्छा इंसान बने और हम दूसरों की मदद करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें। जैसे मैं मुकेश कश्यप भाई का गुरु हूँ, उन्हें मैं बहुत ही अच्छी शिक्षा देता हूँ। हमने आपसे पूछा था बेसिकली किस विषय पर आपके क्या विचार हैं, तो आपने अपनी बात को कुछ अलग तरीके से मैसेज में रखा है। चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम में आप शामिल हुए इसके लिए आपका शुक्रिया। और श्रोताओं अब एक और गीत कार्यक्रम में हो जाए। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं अपने गुरुजनों के महत्व के विषय में, तो वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, हमें अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और संकट की घड़ी में भी शांत रह के उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना है और होठों पर हमेशा मुस्कान रखनी है।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आज हम बात कर रहे हैं जीवन में गुरु की भूमिका विषय पर, और इस विषय पर हमारे श्रोता लगातार हमें मैसेज के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, और उनमें से हमारे एक श्रोता हैं नगीना से, अनिल बिनोचा जी, उन्होंने भी अपना एक मैसेज हमें भेजा है। कहते हैं कि माता पिता के बाद सबसे बड़े गुरु हमारे टीचर ही होते हैं। टीचर खुद जलकर हमें उजाला देते हैं। शिक्षा का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, चाहे बेसिक हो या आजकल के जो टाइम की टेक्नोलॉजी है वो हो, लेकिन टीचर हमें सिर्फ देते ही हैं। जीवन में गुरु का प्रकाश बहुत ही महान है। टीचर अपनी एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं और अपने विद्यार्थियों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बिनोचा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि टीचर अपनी एक कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो इस तरह का ज्ञान का प्रकाश अपने विद्यार्थियों में फैलाते हैं कि वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गुरु का भी नाम रोशन करते हैं। और लास्ट में उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि जैसे जिंदगी और सांसें, कुछ वैसी ही है हमारे जीवन में हमारे गुरु की भूमिका। अनिल बिनोचा जी, इतने अच्छे मैसेज के लिए आपका शुक्रिया। कार्यक्रम में यूं ही हमारे साथ बनी रहिए। और ये हैं हमारे श्रोता, लेकिन इन्होंने जसपुर रोड दूल्हापुर ज़िला मुरादाबाद से। श्रोताओं, हम जैसे कि आपको अपना विषय बता चुके हैं, आपको गुरुजनों से संबंधित बात ही करनी है, उनसे जुड़ा कोई अनुभव, कोई याद आपको हमारे साथ शेयर करनी है, या फिर आप गुरु के बारे में क्या सोचते हैं वो आप मैसेज के माध्यम से हमें पहुँचाएँ लिखकर, और बाकी चीज़ें तो आज यादों का आज कार्यक्रम में

जिक्र इतना नहीं हो रहा है श्रोताओं, तो हम चाहेंगे आपसे कि आप गुरुजनों के संबंध में ही अपने मैसेज हम तक लिखकर पहुंचाएं। कहते हैं कि मुश्किलों के भंवर में जब डगमगाने लगती है नाव, मुश्किलों के भंवर में जब डगमगाने लगती है नाव, गुरु थाम लेते हैं हाथ और देते हैं नया ठहराव। जी हाँ श्रोताओं, मुश्किलों से बाहर निकलने की शक्ति हमें गुरु ही प्रदान करते हैं। भारतीय साहित्य में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पे गुरु शिष्य का संबंध अद्भुत है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और संशय के भंवर में फंस गए थे, तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण ने उनका गुरु बनकर उन्हें उपदेश दिया और जीवन चक्र के विषय में बताया, जो गीता के सार के रूप में प्रसिद्ध है। और जीवन का मूल मंत्र श्रोताओं यही है जो हर गुरु अपने शिष्य को देता है, कि जीवन में कभी रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही विपत्तियां आएं, कितने ही संकट आएं आपके राह में, आपको जीवन पथ पर नई उम्मीद और नए साहस के साथ आगे बढ़ते ही रहना है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये मैसेज हमें मिला है ग्राम भोगपुर नजीबाबाद से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं उदयराज सिंह चौहान, तनु चौहान, मयंक चौहान, तेज प्रताप, भानु प्रताप चौहान, अर्पिता चौहान और आराध्या चौहान। लिखते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, और गुरु का ज्ञान मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। और फिर हमारा भी दायित्व है कि हम भी अपने शिक्षकों को जीवन भर सम्मान दें। गुरु के बिना जीवन ऐसा है श्रोताओं, जैसे बिना तेल के दीपक और बिना नाविक के नाव। एक प्रश्न ये भी उठता है कि गुरु आखिर कौन। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष ही गुरु हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि जो हमें कुछ नया सिखाता है वही गुरु बन जाता है। गुरु का दायरा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो हर तत्व में छिपा है जिससे हमें शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। श्रोताओं, आज शिक्षक दिवस है, और हम आपसे प्रोग्राम्स के जरिए कहना चाहेंगे कि व्यस्तता के कारण हम अपने गुरुजनों से बात नहीं कर पाते। हम सबकी लाइफ में है व्यस्तता उसके चलते, लेकिन आज एक मौका है अपने गुरुजनों के प्रति आभार और सम्मान को व्यक्त करने का। तो आज के दिन अपने गुरुजनों से ज़रूर बात करें, मुलाकात करें या फ़ोन पर बात करें। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी श्रोता इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और आपके जीवन में जो भी गुरुजन रहे हैं, उन्होंने जो आपको शिक्षाएं दी हैं, उनको हमेशा अपने साथ संजो कर रखिए। और हम सबका ये प्रयास भी होना चाहिए श्रोताओं कि गुरु से मिले ज्ञान को, उनके आदर्शों को हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाएँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुपम मिश्रा को दीजिएगा अनुमति, और आप सुनिएगा ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है. राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है. श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है. उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन. इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है. इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने. हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार. मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं. नमस्कार.
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे शोएसआर खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में.
3: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaisyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English. Dr.

0: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award 2026 in New Delhi, the president said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है
0: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The president also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
2: किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर करता है टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे
0: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है मेरे मन में एक विचार आता है या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए
0: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished centre of learning in commerce, economics and management. The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randeep Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 metres above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. In badminton, Indian men's doubles pair Sathvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
3: Ab ilaqai khabrein nashr ki jayengi. ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यौम असातजा के मौके पर गोरखपुर में रियासत भर के 81 असातजा को रियासती असातजा अवार्ड और वजीर आला असातजा अवार्ड से नवाजा। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से 61 और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से 20 असातजा को रियासती सतह के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। इस मौके पर वजीर आला ने रियासत भर के तमाम असातजा को यौम असातजा पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हर उस्ताद कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। डबल इंजन वाली हुकूमत तालीमी निजाम को बेहतर वसाइल से मालामाल और शफाफ बनाने के लिए पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। प्रोग्राम में सानवी तालीम की वजीर गुलाब देवी, माही परवरी के वजीर संजय निषाद और दीगर मुअज्ज़ज़ अफराद भी मौजूद थे। इससे पहले वजीर आला ने एक प्रोग्राम के दौरान बच्चों को अनुप्राशन तकरीब में भी शामिल हुए। रियासत भर में आज यौम असातज़ा मनाया जा रहा है। हर साल 5 सितम्बर को मुल्क के दूसरे सदर और अजीम माहिर तालीम डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश को यौम असातज़ा के तौर पर मनाया जाता है। यौम असातज़ा के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के तमाम असातज़ा को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए वजीर आला ने उत्तर प्रदेश की कदीम इल्मी रवायत को याद किया और जदीद तालीमी निजाम में असातज़ा के अहम रोल को बयान किया। जनाब योगी ने कहा कि उन तमाम असातज़ा को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं जिन्होंने रियासत की मुनफर्द इल्मी रवायत को जदीद शक्ल में नई नस्ल तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा, हम इस पूर्व मुसर्रत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश कदीम जमाने से इल्म, रूहानी मश्क और शकाफत की एक मुकद्दस सरजमीन रही है। काशी ने दुनिया को हिकमत की रोशनी दी, जबकि सारनाथ वो जगह थी जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला खुतबा दिया। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज भी अवधी इल्मी रवायत के बड़े मरकज रहे हैं। काबिनी वजीर राकेश सचान ने कानपुर देहात के जारसन गांव का दौरा किया। मुतासर खानदान को 9,20,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की। कानपुर देहात के जारसन गांव में बारिश के दौरान एक कच्चे मकान के गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और उनके वाले श्रीराम जख्मी हो गए। काबिनी के वजीर राकेश सचान ने मुतासर खानदान की अयादत की। इसमें 2 बच्चों के लिए 4 लाख रुपए और मकान गिरने के लिए 1,20,000 रुपए शामिल है। वजीर ने उन्हें वजीर आजम हाउसिंग स्कीम और रिहायशी लीज की भी यकीन दहानी कराई। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कल ट्रस्ट के अहदेदारों और अरकान के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मंदिर का मुआयना करने और इंतजाम को समझने के बाद जल्द ही एक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, जिस पर अमल दरामद के नतायज जल्द ही नजर आएंगे। जून 2026 के अंग्रेजी यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमर्स और सोशियोलॉजी के दोबारा इम्तिहानात के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने यूजीसी नेट जारी किए हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी का इम्तिहान 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का इम्तिहान उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सोशियोलॉजी का इम्तिहान 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। पेपर में कुछ गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के दोबारा इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। रियासत में 41,424 होमगार्ड अहदेदारों के लिए जारी भर्ती के अमल के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद होने वाला जिस्मानी कारकर्दगी का इम्तिहान अब 14 सितंबर को मुनक्किद होगा। इससे पहले यह इम्तिहान 5 सितंबर को होना था। रियासत में जारी बारिश की वजह से उम्मीदवारों की सहूलत और हिफाजत के लिए यह तब्दीली की गई है। लखनऊ से हमारे नामा निगार की इत्तला है कि उत्तर प्रदेश के कई अजला सैलाब की जद में है। रियासत के 26 अजला अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। फ्लड रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से 3,50,000 से जायद अफराद के मुतासिर होने के बावजूद रिलीफ और रेस्क्यू सिस्टम को सरगर्मी ने 3,50,000 से जायद मुतासरीन में तकरीबन 72,000 फ्लड रिलीफ किट्स और लंच पैकेट तकसीम किए हैं। 17,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें सैलाब की पनागाहें भी शामिल हैं। दरियासना महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में सैलाब के बाद अब तक 166 हिंदुस्तानी शहरियों को बचाया गया है। کل نئی دلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے صحافیوں کو بتایا کہ 275 ہندوستانی شہری ابھی تک لاپتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نیپال میں تعمیر نو اور امدادی کاموں میں مسلسل مدد کر رہا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ وزارت بچائے گئے ہندوستانیوں کے نام باقاعدگی سے جاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1907 ہندوستانی شہری محفوظ ہیں اور چین سے نیپال پہنچ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार श्रोता बहनों, शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हमारी सभी बहनों का स्वागत कार्यक्रम महिला जगत में प्रियंका त्यागी के साथ। बहनों, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक रोशनी है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करती है। उनकी सीख हमारे शब्दों में, उनके संस्कार हमारे व्यवहार में और उनका आशीर्वाद हमारी हर सफलता में दिखाई देता है। बहनों, आज 5 सितंबर है, यानी आज हम सभी देशवासी शिक्षक दिवस मना रहे हैं और यह दिन समर्पित है उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमारी उंगली थामकर हमें अक्षर ज्ञान से लेकर जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाया। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर गुरु के सम्मान और शिक्षा की शक्ति से आज का शुरू करते हैं महिला जगत कार्यक्रम। बहनों, कहा जा सकता है कि एक शिक्षित मन एक परिवार को बदलता है, एक जागरूक परिवार समाज को बदलता है और जागरूक समाज राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। ऐसे ही अपने राष्ट्र निर्माण की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश में शिक्षा की अलग जगाई। शिक्षक दिवस को हम सभी देशवासी देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाते हैं, जो मानते थे कि शिक्षक का काम केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं बल्कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के एक महान दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक आदर्श शिक्षक थे। बहनों, वो हमारे देश के प्रिय शिक्षक इसलिए भी हैं क्योंकि उनके विचारों में शिक्षा का संबंध केवल हमारे करियर से नहीं रहा है बल्कि एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने से भी रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक शिष्य संबंधी विचारों पर अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि एक गुरु शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करते बल्कि उन्हें सही दिशा भी दिखाते हैं, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे ही महान शिक्षक थे। बहनों, आपको बता दें कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में यूं ही नहीं मनाया जाता। बहनों, जब डॉक्टर राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने थे तब उनके कुछ विद्यार्थी उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिवस मनाने के बजाय बच्चों से कहा था कि मेरा जन्मदिवस मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें गर्व होगा। बहनों, तभी से हर वर्ष यह दिन शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, राजनयिक और राजनेता थे। उनका पूरा जीवन शिक्षा, ज्ञान और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने में बीता। बहनों, बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुतन्नी में हुआ था। उनका शिक्षा के प्रति लगाव बचपन से ही रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की और दर्शन शास्त्र को अपनाया और यही आगे चलकर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। बहनों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा को आधुनिक दुनिया के सामने एक उद्देश्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने स्वयं को सबसे पहले एक शिक्षक ही माना। बहनों, हम सभी भारतवासियों के लिए आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार बहुत मायने रखते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को केवल रोजगार के लिए योग्य ना बनाए बल्कि उसे एक बेहतर इंसान और देश का जिम्मेदार नागरिक भी बनाए। तो बहनों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उन महान शिक्षक और दार्शनिक को नमन करते हैं जिनकी जयंती भारत में हर वर्ष ज्ञान के प्रकाश को समर्पित होती है। नमन है हमारे सभी गुरुजनों को। और बहनों, कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अब एक छोटा सा विराम लेते हुए सुनते हैं ये संदेश।

अभी हम सुन रहे थे ये संदेश। भैरों, किसी एक बच्चे के हाथ में किताब देना केवल उसे पढ़ना सिखाना मात्र नहीं है, बल्कि उसके सपनों को एक नई दिशा देना भी है। हमारे क्रम आदि आबादी में हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी महिला की जिन्होंने शिक्षा को अपना व्यवसाय ही नहीं माना, बल्कि समाज को बदलने का सशक्त माध्यम बनाया और विश्व बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अपना सफल करियर छोड़कर वो भारत लौट आई। बहनों, कौन है हमारी आज की आदि आबादी की नायिका, सुनते हैं हमारे क्रम आदि आबादी में। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी कोई शख्सियत भी खुशबू महका जाती है। ऐसी ही है हमारी आधी आबादी की नायिका डॉक्टर सुनीता गांधी, जो कि एक शिक्षाविद, शोधकर्ता और शिक्षा सुधारक है। बहनों, इन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना और इसकी शुरुआत हुई इनके परिवार, माता पिता को शिक्षा के लिए समर्पित देखकर। बहनों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है और इनके पिता डॉक्टर जगदीश गांधी CMS यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक थे और माता डॉक्टर भारती गांधी एक बाल मनोवैज्ञानिक और CMS की सह संस्थापक रही हैं। मेरे उनके माता पिता ने 1959 में लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत की थी, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है।

0: बल्कि सेवा का एक माध्यम बन गई। वो भारत के प्रत्येक बच्चे को साक्षर देखना चाहती थी। सुनीता गांधी पूरे भारत को साक्षर बनाने के लिए उनका क्या सपना था, सुनते हैं इसके बारे में, उनके सपने के बारे में।
1: मेरा सपना रहा कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहती थी कि अगर कोई गरीब हमें दिखता था तो रोना सा आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो गई तो मैं विदेश, लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए। तो मेरे मन में यही है कि एक मतलब पूरा भारत साक्षर हो और पूरी दुनिया साक्षर हो और साथ ही हर बच्चे को मौका मिले कि उसकी जिंदगी अच्छी हो पाए। ये मेरा एक विचार है और मेरे मन में है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं तो शिक्षा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा एक प्रथम पद है जिसके ऊपर अगर बच्चा आ जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है और बहुत समय नहीं लगता।
0: अपने इस सहज शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर सुनीता ने हर संभव प्रयास किए। शिक्षा के प्रति उनकी लगन उन्हें विदेश ले गई। डॉक्टर सुनीता ने इंपीरियल कॉलेज लंदन से फिजिक्स में BSc ऑनर्स किया और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से फिजिक्स में PhD की। PhD करने के बाद उन्होंने अमेरिका की लॉरेंस बार्कलेज लैबोरेटरीज में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। लेकिन बहनों देखिए, सफलता की राह इतनी भी आसान नहीं होती। इनके लिए भी विदेश जाकर स्टडी करना इतना आसान नहीं था। ये अपने भाई के साथ वहाँ गई थी। इनके दृढ़ हौसलों और वहाँ के संघर्षों के बारे में सुनते हैं इन्हीं से इनके बारे में।
1: जब हम लोग लंदन गए तो बहुत ही मुश्किल से जा पाए पढ़ने के लिए। मम्मी पापा ने इधर से उधर से पैसे लेके किसी तरह हमको भेजा। जब वहाँ पहुंचे तो पता लगा चीजें बहुत ही महंगी हैं और मम्मी पापा को हम लोग परेशान नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम लोगों ने फिर जॉब्स लिए। मेरे भाई ने, मैंने स्पेशली बहुत सारे जॉब्स लिए और उसमें क्लीनिंग का भी जॉब लिया, उसके अंदर हर तरह की जॉब ली। उस समय बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे थे, अगर देखा जाए देश की स्थिति के अनुसार हम लोग तो बहुत ही लो लेवल पे थे इकोनॉमिकली, और बच्चे भी थे उसमें 16 साल 17 साल की उम्र थी। तो उस संघर्ष को करके जो आज की इसमें जो हम निकल के आए हैं, वहां से हमने अंडर ग्रेजुएट किया, उसमें हमें स्कॉलरशिप मिली, फिर हमने PhD करी, उसमें हमें स्कॉलरशिप मिली। तो वो लगता है कि शिक्षा के थ्रू मतलब हमें ये मौके मिले।
0: सच में बहनों, बिना संघर्ष और मेहनत के मंजिल नहीं मिलती। इसके बाद डॉक्टर सुनीता गांधी के करियर में एक और नया मोड़ लिया। वो फिर विश्व बैंक के प्रतिष्ठित यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम से जुड़ी और इकोनॉमिक्स के रूप में उन्होंने वहाँ पर काम किया। मेरे महिलाओं के विकास और सामाजिक भागीदारी से जुड़े उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और वर्ष 1996 में उन्हें वर्ल्ड बैंक का मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट अवार्ड मिला। बहनों सोचिए, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शानदार करियर, सम्मान और सफलता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वहाँ काम करते हुए भी उन्होंने महसूस किया कि उनको अपने देश भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है जिससे देश के जरूरतमंद बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण सके। डॉक्टर सुनीता गांधी विश्व बैंक की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर अपने देश वापस लौट आई और भारत लौटने पर उन्होंने देवी संस्थान यानी डिग्निटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साक्षरता को उन लोगों तक पहुंचाना था जो संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रहे हैं। डॉक्टर सुनीता ने देवी संस्थान की शुरुआत क्यों और कैसे की जानते हैं।
1: जी, देवी संस्थान मैंने शुरू किया था, मैं वाशिंगटन में थी उस समय और मुझे लगा कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे चैरिटी के लिए कुछ पैसे देती थी, तनख्वाह अच्छी खासी थी जब तक वहाँ पहुँचे, तो सेवा के काम में उधर भी हम जुटे रहते थे। लेकिन हमने सोचा कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं एक ट्रिप पे जब भारत आई तो मैंने ये संस्थान शुरू किया, देवी संस्थान। मैंने अखबार में डाला कि जो लोग एक देवी संस्थान जैसे नाम मैंने सोचा है डिग्निटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल, क्योंकि डिग्निटी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है मेरे दिमाग में, बट किसी की भी प्रगति के लिए, कि उनके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी होना चाहिए। तो दिमाग में नाम आया था तो मैंने अखबार में डाला कि जो भी इंटरेस्टेड है लोग इसमें मुझे मदद करने के लिए वो।
0: देवी संस्थान की स्थापना का उनका क्या उद्देश्य था, सुनते हैं।
1: देखिए, बहुत सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो रहे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को एक कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए। दैट मीन्स कि हम जो बनाए उसमें जरूरी नहीं कि हम ही हर चीज में भिड़े, हम ही हर चीज में करें, लेकिन वो एक कैटलिस्ट टाइप हो जिससे कि और बहुत सारे लोग उससे जुड़ करके उसको बहुत ही बड़ा रूप दे पाए। तो मैंने रिसर्च करी आते ही वो थी कि लोगों को साक्षर कितनी जल्दी बना सकते हैं। तो मैं जैसे लोगों को स्लम्स में जाके मिलती थी, उनको कभी कभी अपने ऑफिस

0: लेके आती थी, उनको पढ़ाने की कोशिश करती थी, तो समझती थी उनकी क्या मुश्किलें हैं।
1: बहनों, डॉक्टर सुनीता गांधी ने बच्चों के साथ साथ वयस्क साक्षरता पर भी काम किया और शिक्षा के ऐसे तरीकों को विकसित करने पर जोर दिया जिनसे कम समय में प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर मिले। इसी सोच से आगे बढ़ते हुए उनकी महत्वपूर्ण पहल सामने आई अल्फा यानी एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक बुनियादी साक्षरता को तेजी से विकसित करना था। बहनों, इस पद्धति के माध्यम से पारंपरिक तरीकों की तुलना में सीखने की गति को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर सुनीता गांधी ने सभी को ध्यान में रखा और सभी के लिए एक सहज शिक्षा की शुरुआत करने का प्रयास किया। बहनों, आपको बता दें कि डॉक्टर सुनीता गांधी के शिक्षा दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है सभी के लिए कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाना। यह विचार आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है जहां बच्चे और युवा लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा के दबाव में रहते हैं। सच में बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व है डॉक्टर सुनीता गांधी का। बहनों, उनको शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए बहुत से सम्मान भी मिले हैं। एजुकेशन ऑफ द ईयर, विजनरी ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे सम्मानों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। तो श्रोता बहनों, डॉक्टर सुनीता गांधी की जीवन यात्रा, उनके प्रयास हमें यही संदेश देती है, सफलता वह नहीं जो केवल हमें ऊंचाई तक पहुंचाए, सफलता वह है जो हमारी ऊंचाई से किसी और को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर सुनीता गांधी को हमारे क्रम आदि आबादी में। और बहनों, डॉक्टर सुनीता गांधी की जीवन यात्रा हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो यह मानती है कि ज्ञान की शक्ति से समाज को बदला जा सकता है। और देखिए बहनों, कार्यक्रम में अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मेरी पाकशाला का। बहनों, रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह मात्र नहीं बल्कि घर के स्वाद, पोषण, संस्कार और रिश्तों की खुशबू से भी जुड़ी होती है। और जब एक महिला अपने परिवार की जिम्मेदारियों, अपने काम के साथ साथ रसोई घर को भी समय देती है तो इससे अच्छा उनके परिवार के लिए क्या ही होगा। तो बहनों, आज हम अपने क्रम मेरी पाकशाला में जुड़ रहे हैं अपनी एक बहन से फोन के माध्यम से। तो सुनते हैं उनकी खास रेसिपीज, उनके अनुभव।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्ते,
2: स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट मेरी पाकशाला में। तो सबसे पहले हम और हमारी श्रोता बहनी भी आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगी।
3: सभी को नमस्ते, मेरी तरफ से, और मेरा नाम मनस्विता त्यागी है। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, मेरा रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट का बिजनेस है। मैं घर से ही करती हूँ, कभी मेरा ऑफिस भी है, हम कभी कभी ऑफिस भी जाती हूँ, और मेरी एक बेटी है 7 साल।
2: बहुत बढ़िया, आप एक बिजनेस वूमन है लेकिन आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे सेगमेंट मेरी पाकशाला में। तो जाहिर है आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और अपने रसोई घर के लिए भी समय निकालती होंगी। और जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी एक छोटी सी बेटी भी है और साथ आप एक वर्किंग वूमन भी है, तो सबसे पहले तो मनस्विता जी ये बताइए कि आप अपने काम के बीच अपने बिजी शेड्यूल में कुकिंग को कैसे टाइम देती है।
3: एक्चुअली कुकिंग मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, नानी, मेरी मम्मी, सब उन्हें देख देख के हमेशा से मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट आई गेस मैं 14-15 ईयर्स की एज से खाना बना रही हूँ, मुझे इतना पसंद है। और मेरी क्योंकि इतना टाइम हो चुका है तो अब मुझे ट्रिक्स, सब चीजें इतनी परफेक्ट हो चुकी हैं कि अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। और प्लस क्योंकि मुझे पसंद है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ रेसिपीज को अलग अलग तरीके से बनाने का।
2: बहुत खुशी हुई आपसे ये सुनकर कि आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप अपने परिवार के खाने का, पोषण का ध्यान रखती हैं। तो मनस्विता जी, आपकी रेसिपीज में आज क्या खास होने वाला है, क्या बताने वाली है आप हमारी श्रोताओं को?
3: जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे 7 साल की बेटी भी है तो हमेशा कुछ नया नया खाने का मन करता है क्योंकि बच्चा है तो उसको एक्साइटमेंट रहती है चीजों को लेकर, खाने को लेकर। तो मैं उसके लिए नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ।
2: ये बात बहुत अच्छी लगी मनस्विता जी, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना रोज नया नया खाने में कुछ चाहिए, ऊपर से उनके नखरे बहुत होते हैं कि ये नहीं खाना, तो एक माँ का फर्ज होता है कि उसको वो स्वाद के साथ साथ पोषण भी दे। तो आज हम आपसे हेल्दी रेसिपीज के बारे में जानना चाहेंगे।
3: मैं अपनी बेटी की फेवरेट रेसिपी आपको बताना चाहूंगी।
2: बहुत अच्छा, और हमारे जो कार्यक्रम सुन रही श्रोता बहने हैं वो भी शायद इसे सुनकर लाभ उठाएंगी। तो मनस्विता जी आप बताइए।
3: तो बेसिकली मेरी बेटी को चीज बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक न्यू रेसिपी ट्राई करी थी जिसे कहेंगे हम सूजी और चीज के अप्पे। तो इसके लिए बेसिकली आपको सूजी लेनी है, आप एक कटोरी सूजी अगर ले रहे हैं, आधा कटोरी दही और एक कटोरी पानी के साथ उसे घोल लें, एक लिक्विड का बना लें जैसे हम चीले के लिए बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको 15-20 मिनट के लिए साइड रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें डाल सकते हैं जो भी आप सब्जी डालना चाहें, उसमें आप बहुत सारी वेजीज यूज कर सकते हैं, जैसे आप प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, जो भी मटर, कॉर्न, जो भी वेजिटेबल्स आपके बच्चों को पसंद है, या फिर आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्लस आप उसमें पनीर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आपने जो सूजी का बैटर बनाया है उसको आप अप्पे के स्टैंड में हर होल में थोड़ा थोड़ा सूजी का बैटर डालेंगे घी लगाने के बाद, और उसमें वो सारी वेजीज जो आपने मिक्स करी है चॉप करके, उसमें वेजीज में आप सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर बच्चा आपका चिल्ली खा लेता है, मिर्ची खा लेता है, तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ अगर जैसे मेरी बेटी है वो मिर्ची नहीं खाती है तो मैं सिर्फ सॉल्ट यूज करती हूँ, नमक का यूज करती हूँ, तो उसमें नमक मिक्स कर सकते हैं। और फिर उन वेजीज को आप सूजी में जो अभी अपने आप स्टैंड में डाला है उन वेजीज को आप उसमें डालेंगे, और चीज ग्रेट करा हुआ चीज आप उसके ऊपर ग्रेट करेंगे, ठीक है। अब आप इसको ढक के रखेंगे तो जो आपकी सूजी है वो भाप में पक जाएगी और आपका चीज मेल्ट हो जाएगा और आपकी वेजीज भी सौते हो जाएंगे इस तरह से। तो ये 5-10 मिनट में आप उसे उखाड़ के चेक कर सकते हैं थोड़ा सा रोल करके कि नीचे से आपकी सूजी पक गई है, तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। ये आपके अप्पे हो गए हैं सूजी और चीज के, और ये मानिए मेरी बात, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं जितने दिखने में सुंदर रहेंगे। सब्जियां भी बहुत है इसमें,
2: और इसमें आपने ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो जाहिर है कि ये पोषण से भी भरपूर होगी। और जैसे आपने इसमें चीज स्प्रेड किया है, तो बच्चों को कई बार क्या होता है कि जो चीजें आकर्षक लगती हैं देखने में, बच्चों को लगता है कि ये बहुत टेस्टी होंगी। बहुत अच्छी रेसिपी आपने बताई। और मनस्विता जी, आपके खाने खजाने में क्या खास है?
3: तो पता ही है कि बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश चतुर्थी हो और मोदक का भोग न लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
2: हाँ बिल्कुल।
3: तो यहाँ मैं आपको एक नारियल गुड़ वाले सॉफ्ट भी और स्वादिष्ट भी ऐसे मोदक की एक आसान रेसिपी बताना चाहूंगी। तो आप बाहरी परत के लिए 1 कप चावल का आटा ले सकते हैं, 1 कप पानी लें, 1 छोटा चम्मच घी और 1 चुटकी भर नमक, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ पहले कि बाहरी परत आप कैसे तैयार करेंगे। एक पैन में 1 कप पानी, घी और 1 चुटकी भर नमक उबाल लें, गैस धीमी करें और चावल का आटा डालकर तुरंत मिलाएं। अब गैस बंद करके उसे ढक दें और 5 मिनट रहने दें, ठीक है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों पर थोड़ा घी लगाकर मिश्रण को अच्छी तरह से गूंध लें, जैसे हम आटा गूंधते हैं, और आटा नरम और चिकना होना चाहिए। और अगर आटा सूखा लगे तो थोड़ा गर्म पानी आप और डाल सकते हैं। ये तो भारी परत की बात हुई। अब आप उसमें भरावन के लिए 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लें, 3/4 कप गुड़ लें, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो वो सारा फ्लेवर सिर्फ इलायची का ही रह जाएगा उसमें। 1 छोटा चम्मच घी, चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सब 1-2 बड़े चम्मच अपना काजू बादाम जो भी आप ड्राई फ्रूट्स बारीक काट कर आप चाहें तो ले, नहीं तो सिर्फ नारियल और गुड़ का बनाना चाहते हैं तो सिर्फ नारियल और गुड़ का भी बना सकते हैं। अब इसमें भरावन तैयार करने के लिए कढ़ाई में आप 1 छोटा चम्मच घी डालकर नारियल और गुड़ डालें, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया जाएगा ताकि गुड़ पिघल कर मिश्रण थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इलायची और मेवे डालकर फिर गैस तुरंत बंद कर दें, और हम इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि मिश्रण ठंडा बनना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आपका जो मोदक है वो टूटेगा। तो अब मोदक कैसे बनाएं? आप आटे की छोटी लोई लेंगे, उसे हथेली पर या उंगलियों पे पतला फैलाएं, बीच में 1 चम्मच भरावन रखें और किनारों पर छोटी छोटी प्लेट बनाते हुए ऊपर से बंद कर दें। तो आप जब किनारों पे प्लेट बनाएंगे और ऊपर ले जाकर उसे बंद करेंगे तो एक मोदक की शेप ले लेगा वो। अब स्टीमर में पानी गर्म करें, मोदक को केले के पत्ते या फिर आप जैसे छन्नी होती है घर में, छन्नी में रख के लगभग 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं। और जब आपको लगे कि मोदक की भारी परत थोड़ी चमकदार हो गई है और आपको थोड़ा सा अंदर का भरावन दिखने लगा है, पारदर्शी हो गई है, तो समझिए आपका मोदक तैयार। इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आटे की परत बहुत ज्यादा पतली है, उसे हल्का सा मोटा ही रहने दें, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मोदक भाप में टूट भी सकता है।
2: मनस्विता जी, आपने बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई। जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो कार्यक्रम सुन रही हमारी श्रोता बहने उसको अपने घर पर जरूर ट्राई कर सकते। मानसकृता जी, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई हमारे पारंपरिक व्यंजनों जो कि हमारी दादी नानी बनाती थी और जो आज का आधुनिक खान पान हो गया है, उसमें आपको कितना अंतर महसूस होता है?
3: देखिए, पारंपरिक व्यंजनों को बनाने में हमेशा नेचुरल प्राकृतिक घर की सामग्री, पीसे हुए मसाले, कुटे हुए मसाले अधिक प्रयोग होते थे, तो उनमें स्वाद भी अलग होता था, पर इनमें बस यह है कि बनाने में वक्त ज्यादा लगता था। वही आज के आधुनिक खाना जल्दी तैयार हो जाता है और उसमें नए नए स्वाद, बट अगर कहा देखा जाए तो फास्ट फूड अधिक शामिल है,
2: पैक्ड फूड बहुत आ रहे हैं आजकल।
3: हाँ जी, तो वही है कि पहले का समय था, पहले खाना बनाने में वक्त लगता था, मसाले कूटे जाते थे, स्वाद भी था, पोषण भी था, और चूल्हे पे बने खाने की तो खैर बात ही अलग थी।
2: ये बात सही कह रही है। तो क्या कोई ऐसी रेसिपी है जो आप शायद आज भी याद करती हैं अपने घर की, अपनी आपकी कोई अपनी पारंपरिक रेसिपी?
3: जैसे मेरी अम्मा की अम्मा बनाती थी अरहर की दाल भून के, वो आज भी वो स्वाद वैसे का वैसे ही है, मैं आज भी वही सेम रेसिपी फॉलो करती हूँ। तो वो अलग बात है कि वो बनाती थी चूल्हे पे हंडिया में भून के बनाती थी, कुकर की तरह सीटी लगा के नहीं, वैसे पकाती थी, समय लेके पकाती थी, तो उसके उसका स्वाद तो फिर कोई नहीं ला सकता आज के टाइम में, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसी रेसिपी को फॉलो करके आज भी अपनी दाल वो बनाई जाए।
2: आप इतना बिजी रहते हुए भी आज भी अपने परिवार को वही पोषण और स्वाद देने की कोशिश कर रही हैं जो शायद आपकी दादी नानी और आपकी मम्मी ने आपको दिया है। तो चलते चलते कार्यक्रम में हमारी श्रोता बहनों को आप कुकिंग से रिलेटेड क्या छोटे छोटे से टिप्स देना चाहेंगी?
3: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खाना खाना और बनाना दोनों ही तसल्ली का काम है, हम जितना हो सके उतना पोषण दें खाने में, क्योंकि अगर पोषण अच्छा होगा तो स्वादिष्ट खाना अपने आप हो ही जाता है। अपने पुराने मसाले और सब्जियां ये सब मानेंगे तो यही बेसिकली बेसिक मेडिसिन है आज के टाइम पे, और उनका सही उपयोग हो तो खाना स्वादिष्ट बन सकता है और पौष्टिक भी।
2: आपने हमारे क्रम मेरी पाकशाला में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज और अपने बहुत अच्छे विचार भी हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: बहनों, अभी हम मनस्विता त्यागी से सुन रहे थे उनके कुछ अनुभव और खास रेसिपीज हमारे क्रम मेरी पाकशाला में। और सच में बहनों, हर रसोई घर में छिपी है एक कहानी और हर स्वाद में बसा है अपनों का प्यार। तो बहनों, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी सुनकर मन खुश हो गया, तो क्यों ना अपनी खुशी को दुगना करने के लिए इस प्यारे से गीत का आनंद लिया जाए।

बहनों, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का महिला जगत कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। बहनों, अपने विचारों सुझावों से हमें अवगत कराने के लिए आप हमें पत्रों के साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकती हैं। बहनों, मैसेज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। और बहनों, पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो बहनों, ये हो गया हमारा पता, और इसी के साथ कि हमारी सभी बहनें स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रियंका त्यागी को दे अनुमति आज का महिला जगत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:45 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत, और लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: The India Meteorological Department has issued orange color warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts, relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी।

0: बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेल कूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी।
1: भारत विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा था, नहीं पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर करते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में

0: रह रहे बच्चों के लिए काम किया। तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर

0: 907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
0: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थी

के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 2:30 और 20 सेकंड्स हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही गीतकार, जिसमें श्रोताओं आज के गीतकार हैं कुमार। श्रोताओं, कुमार का पूरा नाम है राकेश कुमार पाल, जिन्हें सिनेमा जगत में कुमार नाम से जाना जाता है। ये बॉलीवुड के सबसे सफल, लोकप्रिय और व्यस्त गीतकारों में से एक हैं। इन्होंने पिछले 2 दशकों में 200 से अधिक फिल्मों के लिए सैकड़ों सुपरहिट गीत लिखे हैं। वो पार्टी एंथम से लेकर बेहद भावुक और रोमांटिक गीत लिखने के लिए मशहूर हैं। तो आइए सुनते हैं कुमार का लिखा हुआ ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

पिता के महत्व को समर्पित ये गीत श्रोताओं भी आपने सुना। फिल्म का नाम था बॉस और इसे लिखा था कुमार ने। श्रोताओं, कुमार का जन्म पंजाब राज्य के जालंधर में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने जालंधर के डीएवी कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। कुमार को शुरू से ही लिखने का शौक था। परिवार में उनके पिता धर्मपाल और बाकी सदस्यों ने संगीत और लेखन के प्रति उनके जुनून को समझा और हमेशा उनका साथ दिया। और फिर कुमार अपने सपनों का पीछा करते हुए पहुंच गए मुंबई।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
4: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतकार कुमार के बारे में। साल 1999 में मुंबई आने के बाद उन्हें पहली बड़ी सफलता सुखबीर के मशहूर पॉप एल्बम के गीत इश्क तेरा तड़पावे से वर्ष 2000 में मिली। दिलचस्प बात यह है श्रोताओं कि कुमार ने इसे एक बेहद उदास गीत के रूप में लिखा था, लेकिन जब सुखबीर ने इसमें फास्ट बीट्स जोड़ी तो ये गीत भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी एंथम बन गया। श्रोताओं, कुमार की ये खासियत है कि एक तरफ तो वो मस्ती भरे गीतों को लिखने में कुशल हैं, तो वहीं जीवन में जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको भी बखूबी अपनी कलम से शब्द देना वो जानते हैं, जैसे कि ये गीत।

श्रोताओं, गीत इश्क तेरा तड़पावे की सफलता के बाद कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बॉलीवुड के लगभग हर बड़े संगीतकार जैसे मीत ब्रदर्स, विशाल शेखर, प्रीतम, तनिष्क बागची, इन सभी के साथ काम किया। उनके लोकप्रिय गीतों में शामिल हैं चिटियां कलाइयां, काला चश्मा, बेशर्म रंग और झूमे जो पठान। बात अगर रोमांटिक और भावुक गीतों की करें तो सूरज डूबा है, सोच ना सके, मैं यार हूँ, चलिया और जो भेजी थी दुआ के साथ साथ, पानियों सा बेहतर हूँ, ये कुछ ऐसे गीत हैं कुमार के लिखे हुए, श्रोताओं, जो मन को सुकून देते हैं।

श्रोताओं, छोटे से शहर से बड़े सपनों को साथ लेकर माया नगरी आने वाले कुमार ने फिल्म एयरलिफ्ट के गीत सोच ना सके के लिए मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जीता। कुमार को श्रोताओं फिल्म रॉय के गीत सूरज डूबा है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का नामांकन मिला था। कुमार के लिखे गीत सोशल मीडिया पर लगातार बिलियंस में व्यूज बटोरते हैं और चार्ट्स पर टॉप करते हैं।

श्रोताओं, गीतकार कुमार स्वभाव से बेहद जिंदा दिल और मिलनसार व्यक्ति हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते हैं, इसलिए उनके परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है। गीतकार कुमार, श्रोताओं, यूं ही मधुर गीत लिखते रहें और हमारा मनोरंजन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं, मगर चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जो कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी, विपत्तियों में भी अपने जीवन को मुस्कुराते हुए जीने की प्रेरणा देता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार, जिसमें आज के गीतकार थे कुमार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, हमारी आज की संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संदर्भ में। और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम विषय पर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में और आज आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। श्रोताओं, मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज आइए पहले बात करते हैं कुपोषण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विषय पर। जी हां, आज हम बात करेंगे श्रोताओं देश की उन महिलाओं के बारे में जो एक नए जीवन को दुनिया में लाने वाली हैं। श्रोताओं, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ ना हो, और बच्चा तब स्वस्थ होगा श्रोताओं जब माँ को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण, अच्छा खाना और भरपूर आराम मिलेगा। हमारे देश में आज भी कई कामकाजी और गरीब बहनें श्रोताओं ऐसी हैं जिन्हें गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक मजदूरी करनी पड़ती है ताकि घर का चूल्हा जल सके। और इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार की एक अद्भुत योजना काम कर रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। श्रोताओं, इस योजना के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पौष्टिक आहार और आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण हमारी गरीब और कामकाजी बहनें मजदूरी करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे मजदूरी के नुकसान की चिंता किए बिना अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का, उनके पोषण का पूरी तरह से ध्यान रख सकें। बात करें अगर कि किन लोगों के लिए बनी है ये योजना, तो श्रोताओं ये योजना उन सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए है जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को तो मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता ही है। ये विशेष रूप से समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसके तहत परिवार के पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की नगद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। साथ ही एक नया बदलाव ये भी है कि यदि दूसरा बच्चा बेटी होती है तो महिला को 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है ताकि बेटियों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिल सके। इस योजना का लाभ लेना बेहद सरल है। सबसे पहले जैसे ही गर्भावस्था का पता चले अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी MCP कार्ड यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, अपना और अपने पति का आधार कार्ड और अपने बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी जमा करनी होती है। ये राशि किश्तों में सीधे आपके खाते में DBT के माध्यम से आती है। पहली किश्त गर्भावस्था के जल्दी पंजीकरण पर और दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण और आवश्यक टीकों का पहला चक्र पूरा होने पर मिलती है। तो श्रोताओं, यदि आपके घर में या पड़ोस में कोई भी गर्भवती बहन है तो उन्हें

आज ही अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM या आशा से मिलने को कहें, वे आपको फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगी। आप चाहें तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बस यही सही समय पर अपना पंजीकरण कराएं, पौष्टिक आहार पाएं और अपने बच्चे को एक स्वस्थ भविष्य दें। और श्रोताओं, अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बाद आइए बात करते हैं ऐसी एक और महत्वपूर्ण योजना की, जो कि है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, जिसे हम NFSA के नाम से भी जानते हैं। श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि भूखे पेट ना होए गोपाला, यानी जब तक देश का हर नागरिक पेट भरकर खाना नहीं खाएगा, तब तक देश की तरक्की की बात अधूरी है। कुपोषण को जड़ से उखाड़ फेंकने और देश के अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया है और ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आइए आपको बताते हैं कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रोताओं, ये एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये आपका कानूनी अधिकार है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और ज़रूरतमंद परिवारों को बहुत ही कम यानी नाम मात्र की कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का अनाज, जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज सुनिश्चित कराना है। इसका लक्ष्य ये है कि पैसे की कमी के कारण देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा या बुजुर्ग भूखा ना सोए और समाज से कुपोषण का नामोनिशान मिट जाए। बात करें अगर ये योजना किन लोगों के लिए बनाई गई है, तो श्रोताओं, ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है और इसके तहत देश की लगभग 2/3 आबादी को कवर किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से श्रोताओं, दो श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें पहली श्रेणी है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली परिवार। ये हमारे समाज के सबसे गरीब परिवार हैं, जैसे भूमिहीन मजदूर, विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति या वृद्धजन। इस श्रेणी में हर परिवार को, चाहे उसमें कितने भी सदस्य हों, हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। और दूसरी श्रेणी है प्राथमिकता वाले परिवार, यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। इस श्रेणी में आने वाले परिवारों के प्रति सदस्य यानी प्रति यूनिट के हिसाब से हर महीने 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो कुल 25 किलो अनाज मिलेगा। इसके अलावा इन कानून में बच्चों और माताओं के लिए विशेष प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से रोजाना पौष्टिक गर्म भोजन या टेक होम राशन मिलता है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों को मिड डे मील के तहत स्कूलों में दोपहर का मुफ्त और पौष्टिक खाना भी दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने का मुख्य जरिया है, श्रोताओं, आपका डिजिटल राशन कार्ड। राज्य सरकारों द्वारा हर गांव और शहर में सर्वेक्षण करके पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाती है। यदि आपका परिवार इस पात्रता में आता है तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा जाता है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज जो कि हमने दी आपको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना विषय पर। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम संपन्न होता है। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। पहले जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर किसान श्रोता सुनेंगे लोकगीतों और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का आकर्षण रहेगा कुछ खास है आज गीत आपके नाम बात एक काम की और युवा श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलों का आनंद लीजिएगा हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर। रात्रि 8 फिल्म संगीत का कार्यक्रम की संध्या होगा और रात्रि 8:30 पर क्रम रहेगा एक ही फिल्म से क्रम का। तो श्रोताओं ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष कार्यक्रमों पर और अब जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:30 पर और 6:40 पर होगा चिंतन। काव्यधारा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर ऋतु अग्रवाल का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकते हैं।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय होगा जीवन शैली से संबंधित रोग और खेती की बात क्रम में कल प्रातः 7:10 पर बकरी पालन है लाभकारी विषय व्यवसाय विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। कल प्रातः 7:31 पर समय रहेगा जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का। शशिकला राजपूत के गाय रुहिलखंडी लोकगीतों का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं हमारी धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:20 पर।

महेंद्र सिंह चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत सुनिएगा लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। दिन में 12:05 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। फिल्मी संडे में कल दिन में 12:30 पर फिल्म रहेगी राजू बन गया जेंटलमैन। बच्चे सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल वाटिका कल दिन में 1:15 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक श्रोता सुन सकते हैं कल दोपहर 2:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: वो बचपन की किताब है, वो कलम की स्याही, वो टीचर की डांट में छुपी थी हमारी भलाई।
1: जो हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते रहे, हम गिरते रहे और वो संभालते रहे।
0: देखो आज जिंदगी ने कितने ही पन्ने भी बदल लिए।
1: पर टीचर्स ने जो सबक दिए, वो हमने हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रख लिए।
0: स्याही, टीचर, बचपन, डांट, किताबें और जिंदगी, जैसे खूबसूरत लफ्जों से ही करते हैं आज की शुरुआत। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी।
1: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त उज्मा, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। और मेरे साथ एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी प्यारी सी साथी मानिका।
0: तो उज्मा, क्या तुम भी एक चीज मानती हो कि जब स्कूल के बाद जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, तो उसका कोई सिलेबस नहीं होता और ना ही कोई फिक्स्ड क्वेश्चन पेपर होता है।
1: बिल्कुल, और ना तो ये पता होता है कि अगला सवाल आखिर होगा कौन सा।
0: लेकिन दोस्तों, उन इम्तिहानों से गुजरते हुए जो कुछ भी हमें हमारे टीचर्स सिखा जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आता है।
1: मोनिका, बातें तो आगे हम खूब सारी करने वाले हैं। मैं क्या सोच रही थी कि पहले आज की शाम का, यानी कि सैटरडे स्पेशल सेगमेंट गीत आपके नाम की शुरुआत ही कर देते हैं।
0: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ। दोस्तों, इस सेगमेंट में आप सब भी हमारे साथ मैसेजेस के जरिए जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: और आज आप हमें मैसेजेस के जरिए बता सकते हैं कि आपके स्कूल टाइम में आपके फेवरेट टीचर कौन थे और उन्होंने आपको जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सिखाया।
0: तो अपनी यादों की किताब का वो पन्ना जल्दी जल्दी से खोलिए और हमें मैसेजेस लिख भेजिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं यादों से जुड़ी एक और खास प्रस्तुति।

0: किताब बदली, क्लास बदली, सपने थे आंखों में, टीचर का साथ था बचपन की राहों में,
1: हर गलती पर डांटना, हर जीत पर मुस्कुराना, ना जाने कितने सबक बिना किताबों के पढ़ाए। बचपन तो बीत गया पर बात वही रह गई।
0: कलम से जो लिखना सिखाया था बचपन में, वही सबक काम आए जिंदगी के हर इम्तिहान में। दोस्तों, आज हमने सोचा है कि क्यों ना आज की बात किसी एक टीचर की कहानी से नहीं, बल्कि हम सब की टीचर्स वाली कहानियों से शुरू की जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि स्कूल की अपनी एक अलग ही बात होती है। स्कूल खत्म हो जाता है, क्लास बदल जाती है, टीचर्स बदल जाते हैं, लेकिन
0: कुछ टीचर्स की कही हुई बातें हमारे अंदर वहीं की वहीं रह जाती हैं और कभी कभी बाहर निकल जाती हैं।
1: कभी किसी टीचर की डांट याद आ रही होती है, तो कभी उनका हम पर किया हुआ भरोसा,
0: और कभी कभी तो दोस्तों टीचर का नाम भी शायद याद नहीं होता, लेकिन उनसे जो हमने सीखा था वो जिंदगी भर याद रह जाता है।
1: तो आज हम ऐसे ही कुछ यादों को ताजा करने वाले हैं और कुछ साथियों से पूछेंगे सिंपल से सवाल।
0: बट आई एम श्योर उज्मा, उनके जवाब एकदम दिल को छूने वाले होंगे, क्यों, है ना?
1: तो चलो फिर पूछते हैं हमारा पहला सवाल। तो चलो मोनिका, हम चलते हैं अपने पहले साथी के पास और अपने उस प्यारे से साथी से पूछ लेते हैं पहला ये अपना सवाल।
0: बिल्कुल, तो चलिए आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ में एक टीचर का क्या रोल रहा है।
2: एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर ज्ञान का पुंज होते हैं और वो जिंदगी जीना सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
2: एक शिक्षक अनुशासित रह करके बच्चों को अनुशासित भी बनाता है। तो बहुत अधिक हमारे जो जिंदगी में अनुशासन आता है वो एक शिक्षक ही वो देता है, अनुशासित होना। एक बार का अपने टीचर के लिए मुझे याद आ रहा है, एक हमारी विभा मैम थी, वो हमें संस्कृत पढ़ाती थी और मुझे बहुत टिपिकल सब्जेक्ट लगता है संस्कृत
0: जी।
2: और उन्होंने हमें रूप याद करने के लिए दिए। अब हमें तो दादी नानी सब याद आ गई कि अब कैसे रूप याद करें हम। तो हमने लिख लिख करके उन रूपों को याद किया, क्योंकि हमें मैडम ने कहा था और कहा था ब्लैक बोर्ड पर लिखवा करके देखूंगी। और आ गया वो क्षण कि अगले दिन हमें रूप ब्लैक बोर्ड पर लिखने थे और क्रम वाइज लिखवाती जा रही थी मैम, और बोला कि अगर किसी ने जितनी गलतियां की उतनी ही स्टिक आपके लगेंगी। और हमें बहुत डर लग रहा था। खैर, हमें याद कर लिए थे तो हम गए भी, डरते डरते गए ब्लैक बोर्ड पर लिखे। इत्तेफाक ये हुआ कि सारे रूप सही गए।
0: अरे वाह।
2: तो हमारी मैडम ने हमारे लिए क्लैपिंग कराई। उस दिन से वो दिन मैं कहूंगी कि मैडम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। लिख करके जो याद किया जाता है वो हमेशा याद रहता है, वो हम कभी नहीं भूलते।
1: तो आप अपनी उन टीचर के लिए आज जैसे कि शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे शिक्षक ज्ञान का पुंज है और वो हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहे। और मैं भी एक टीचर हूँ, उन्हीं के माध्यम से मैंने भी सीखा कि एक अनुशासित रूप से हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। किस एक सिलेबस ही पूर्ण कराना नहीं होता, उन्हें जिंदगी जीना सिखाना होता है।
0: बिल्कुल, यही हमारा भी एक आज के हमारे लिसनर्स के लिए एक मैसेज बहुत अच्छा रहेगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ एक उनका सिलेबस ही पढ़ाना काफी नहीं होता है आजकल की लाइफ में, उनको जिंदगी के सबक भी साथ साथ सिखाने बहुत जरूरी है। और हमें आपसे सुनकर ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप खुद एक टीचर हैं।
1: तो सबसे पहले आपको ही हैप्पी टीचर्स डे।
2: थैंक यू।
1: तो मोनिका, जैसे कि हम अपने साथियों से मिल रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि स्कूल लोग नहीं गए हैं, भाई सभी स्कूल गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो लगाव था उनका टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यही हम अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं।
0: तो और पूछेंगे कि बिल्कुल कभी डांट पड़ी है या नहीं।
1: तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं अपने एक और प्यारी सी साथी से और उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या उन्हें भी डांट पड़ी स्कूल में। तो दोस्त, क्या आपको कभी स्कूल में डांट पड़ी है?
3: अरे एक बार नहीं, बहुत बार।
1: अच्छा, तो आप हमें रीजन बताइए, आखिर वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आपको डांट पड़ी?
3: पहली बात तो ये है कि देखिए, जो स्कूल डेज होते हैं वो बहुत ही हमारी लाइफ के ऐसे डेज होते हैं कि शायद हम उनको कभी नहीं भूल पाते। तो हम उन दिनों शरारत भी करते थे और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन फिर भी ये है कि मैथ्स में बहुत वीक थे हम। तो चाहकर भी जो सवाल हम नहीं कर पाते थे तो उसको लेकर हमें सर से बहुत डांट पड़ती थी।
0: अब आप हमें ये बताइए कि उस टाइम पे जो डांट पड़ी थी वो तो ऑब्वियसली जाहिर है कि आपको बुरी लगी होगी, क्योंकि बच्चों को डांट पड़ती है तो उनको बुरा भी लगता है। लेकिन आज की लाइफ में आपको क्या लगता है कि उस टाइम की वो डांट आपके कितने काम आई और आपने उस डांट से क्या सीखा?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया। उस टाइम पे तो बुरा लगा था कि अरे सारी क्लास के सामने डांट पड़ गई, एक दो छड़ी भी पड़ गई थी, लेकिन फाइनली जो सर ने हमें सिखाया था वो बाद में हमने सीखा और जो हमारे एग्जाम्स आने वाले थे उसमें वो बहुत काम आया, मेरा रिजल्ट अच्छा रहा।
1: क्या आपको लगता है कि वो दिन काश फिर से वापस आ जाए?
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो दिन फिर से वापस आ जाए, हमारे टीचर्स हमारे फ्रेंड्स, काश वो दिन फिर से लौट आए।
1: तो जैसा कि आज है शिक्षक दिवस, तो आप अपने टीचर्स को याद करके क्या कहना चाहेंगी?
3: हमारा जो परिवार होता है वो पहली पाठशाला होती है, लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें जीवन की नई दिशा प्रदान करते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। जो लाइफ में हम आज हैं, हमें लगता है कि वो बहुत कुछ हम अपने गुरु की वजह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही उज्मा इन्होंने, और इनसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल दिल को छू गई हमारे इन साथी की बातें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं और हमारे जो अगले साथी हैं वो हमसे क्या शेयर करने वाले हैं।
0: तो उज्मा, अगला क्वेश्चन मैं अपनी साथी से पूछूं?
1: बिल्कुल भाई।
0: तो चलिए आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ में आपके आइडियल टीचर कौन रहे?
4: वैसे तो देखिए मैं हर टीचर्स में अपना आइडियल देखती थी,

0: क्योंकि टीचर्स तो हमारी लाइफ को जो एक सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी लगती थी जी हमारे एक टीचर्स, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, तो विजयलक्ष्मी उनका नाम है। लुक वाइज वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आती थी, तो मैं बड़ी इम्प्रेस रहती थी उनको देखने के लिए, आज कौन सी साड़ी पहनी, आज वो कैसी लगेंगी। और दूसरा, वो अनुशासन में भी बहुत ज्यादा रखती थी, तो हम डरते भी बहुत ज्यादा थे। कई बार वो हमसे कुछ पूछती थी तो डर के मारे हम बता भी नहीं पाते थे, भले हमें आता था, बट आज भी उनकी छवि मेरे दिल में है।
1: अच्छी बात है ये तो कि उनकी छवि आज भी आप याद करती हैं।
2: मतलब कह सकते हैं अनुशासन प्लस डर प्लस वेल ड्रेसअप सेंस, आपको वो सब कुछ याद है आज।
1: जैसे कि आज शिक्षक दिवस है, तो उस दिन के लिए एक लाइन में अगर आपको कुछ कहना हो तो वो क्या होगा?
0: टीचर्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन का वो रास्ता दिखाते हैं जो हम बनना चाहते हैं।
1: थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
2: तो मोनिका, बढ़ते हैं अपने अगले साथी की तरफ और उनसे भी जानते हैं कि शिक्षक दिवस पर आखिर उनके क्या विचार हैं।
1: बिल्कुल, और उनके लिए हमारा सवाल है, आपको क्या लगता है कि टीचर्स सिर्फ वो होते हैं जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखा जाता है, वो भी टीचर हो सकता है?
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी भी एक टीचर है, स्कूल में तो टीचर है, और मेरी मम्मी होने के साथ साथ वो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कि कभी भी मैं लाइफ में डीमोटिवेट हो जाती हूँ ना, वो मुझे इतनी ज्यादा हिम्मत देती है कि कभी भी मुझसे यही बोलती है कि तू सब कुछ कर सकती है, तेरे में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि तू हार किसी भी चीज में मत मानना, क्योंकि तू बहुत कुछ कर सकती है, अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकती है। मतलब मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करती है कि अगर वो मुझे हिम्मत ना दे तो मैं आज कुछ नहीं हूँ। तो जो भी कुछ है वो सब मेरी मम्मी की वजह से है।
2: मतलब आप इस शिक्षक दिवस पर कहना चाहती हैं हैप्पी टीचर्स डे मम्मी?
3: बिल्कुल, मैंने आपको बताया टीचर तो वो है ही, टीचर्स डे मैं अपनी मम्मी को विश करना चाहूंगी, हैप्पी टीचर्स डे टू माय मम्मी।
2: तो अब मुझे लगता है अगर आपकी मम्मी ये सुनेंगी तो पक्का वो दिल से बहुत ही खुश हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को
1: सामने से कुछ सामने से

0: टीचर्स को, मेरे भी जो टीचर्स रहे हैं सबकी बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आज तक है, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। वन लाइन में अगर उन्हें डिफाइन करूँ तो मैं यही बोलना चाहूंगी, यू ऑल आर बेस्ट। थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, अगर आप अपने टीचर्स को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन एक गिफ्ट में उन्हें ये भी बताइए
2: कि उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या बदला, क्योंकि टीचर्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ मार्कशीट में नहीं होती,
1: बल्कि वो तो स्टूडेंट के बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और जिंदगी में भी नजर आती है।
2: एक अच्छे टीचर शायद आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हैं,
1: लेकिन वो आपको ऐसा बना देते हैं जो आप बन सकते हैं। तो हम सबकी तरफ से उन सभी टीचर्स को दिल से थैंक यू।
3: हैप्पी टीचर्स डे।

दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट, बात काम की तरफ। तो चलिए आज सुनते हैं ये बात काम की।

0: आज बात काम की में हम बात करने वाले हैं खाने की।
1: नहीं मोनिका, खाने की नहीं, खाने के टेस्ट की।
0: बिल्कुल, एक ऐसी चीज जो हमारे खाने के टेस्ट को बदल देती है।
1: बिल्कुल, जिसका नाम है मिर्ची।
0: दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मिर्ची खाते ही हमें तीखा क्यों लगता है?
1: अब आप सब सोच रहे होंगे, जाहिर है मिर्ची तीखी जो होती है।
0: इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि तीखा तो एग्जैक्टली टेस्ट ही नहीं होता।
1: बिल्कुल सही, हमारी टंग यानी के जीभ मेनली खट्टे मीठे कड़वे नमकीन जैसे टेस्ट को ही डिडक्ट करती है, लेकिन मिर्ची का तीखापन इनमें से कोई टेस्ट नहीं है।
0: मिर्ची में एक केमिकल कंपाउंड होता है, कैप्साइसिन। जब हम मिर्च खाते हैं तो कैप्साइसिन हमारे माउथ के कुछ स्पेशल नर्व रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है
1: और बस फिर ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, भाई मुंह जल रहा है। और इसी वजह से मिर्च खाने पर बॉडी बेसिकली हीट के रिस्पॉन्स जैसे रिएक्शन देने लगती है।
0: और तो और, कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी पीने पर हमेशा रिलीफ भी नहीं मिलता, वो इसलिए क्योंकि कैप्साइसिन फैट सॉल्युबल होता है। तब दूध या डेयरी प्रोडक्ट कुछ लोगों को ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं।
1: तो मोनिका, अब जब किसी को मिर्ची लगे और कहे टेस्ट तीखा है तो उन्हें क्या बोलना है?
0: बस यही कि टेस्ट तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है जी, ये तो बस नर्व का अलार्म है।
1: तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की बात, छोटी सी लेकिन एक बात काम की।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
6: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
7: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
8: हो जाओगे आज सच कर लोट पोट,
7: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
0: और डोज में क्या है?
8: डोज में है मजा।
7: जी हाँ, मजा आ गया।
9: हेलो अंकल।
10: हेलो मेरे बच्चा, कैसे हो?
9: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
10: और
9: अंकल, आपको पता है आज मुझे PhD की डिग्री मिल गई।
10: अरे वाह, तुम तो मुझे पता ही था, पहले से ही होना आ रो
9: जी। और ना आप ऐसा कीजिए, आप वो मेरा उधारी वाला खाता है ना, वो निकाल दीजिए।
10: बड़ी खुशी की बात है, आज सारा हिसाब चुकता करोगी क्या?
9: अरे नहीं नहीं अंकल, बस वो जो खाते में आपने मेरा नाम लिखा है ना, उसके आगे डॉक्टर लगा दो, मजा आ जाएगा।
7: जी हाँ, मजा आ गया।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ रास्ता नहीं बताते बल्कि हमें उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और अगर हमारी जिंदगी के उन लोगों की बात करें तो सबसे पहले याद आता है एक टीचर।
1: बिल्कुल मोनिका, क्योंकि शिक्षक सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पढ़ाते, वो तो हमें जिंदगी पढ़ना सिखाते हैं, कभी डांट कर, कभी समझा कर, और कभी सिर्फ एक छोटे सा हौसला देने वाली बात कहकर वो हमारे अंदर का आत्मविश्वास जगा देते हैं।
0: और शायद उज़्मा, इसीलिए हमारे देश में शिक्षकों के सम्मान में हर साल 5 सितंबर यानी के आज ही के दिन मनाया जाता है ना शिक्षक दिवस। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि 5 सितंबर ही क्यों? आखिर इस तारीख का शिक्षक दिवस से क्या लेना देना?
1: वो इसलिए क्योंकि ये कहानी इसी से जुड़ी हुई है। भारत के महान दार्शनिक, शिक्षावादी और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से।
0: हाँ बिल्कुल सही, डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वो खुद एक महान शिक्षक और शिक्षा के प्रबल समर्थक भी थे। कहा जाता है कि जब उनके कुछ फ्रेंड्स ने और उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनके बर्थडे मनाने के लिए कहा, उनसे जिद की, तो उन्होंने कहा अगर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है तो क्यों ना ये दिन टीचर्स को ही डेडिकेट कर दिया जाए।
1: और यही सोच आगे चलकर एक बड़े राष्ट्रीय सम्मान में बदल गई। भारत में पहला शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया और तब से हर साल 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
0: यानी कि आज का दिन सिर्फ किसी एक शिक्षक को हैप्पी टीचर्स कह देने का नहीं है, बल्कि ये दिन हमें याद भी दिलाता है कि एक शिक्षक का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है तो उसे सिर्फ ए बी सी या का खा गा नहीं सिखाया जाता, उसे सिखाया जाता है गलती होने पर दोबारा कोशिश करना, हारने पर फिर खड़े होना और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना।
0: और ये सारी चीजें जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर विश्वास रखना। और एक टीचर का असर सिर्फ एक क्लासरूम तक नहीं लिमिट रहता। जब स्कूल की घंटी बजने के बाद जिंदगी, पहले भी हमने जिक्र किया है कि जिंदगी जब अपने असली इम्तिहान लेने लगती है ना, तब हमें याद आती हैं वही बातें जो कभी हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई होती हैं।
1: बिल्कुल, कभी कभी किसी टीचर्स ने कहा होता है डरो मत बेटा, कोशिश करो। कभी कह देते हैं तुम इससे बेहतर कर सकते हो और कभी सिर्फ इतना कह देते हैं मुझे तुम पर भरोसा है। शायद उस वक्त ये बातें हमें बहुत छोटी लगे, लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ ये शब्द हमारा सहारा बन जाते हैं।
0: और यही तो है ना आज के दिन का रियल पर्पस, अपने टीचर्स के लिए रेस्पेक्ट और उनके योगदान को याद करने का दिन। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, वो हमारी सोसाइटी और आने वाली जनरेशन को एक सही रास्ता बताने वाला व्यक्ति है।
1: बिल्कुल, तो आज अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे टीचर हैं जिनके आपको जिन्होंने आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि आपको बेहतर इंसान बनाया है, तो आज उन्हें एक बार जरूर कहिएगा दोस्तों थैंक यू सर या थैंक यू मैम।
0: क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए तो सिर्फ नॉर्मल शब्द हों, लेकिन आपके टीचर के लिए उनकी मेहनत की बहुत बहुत खूबसूरत रिकॉग्नाइजेशन होगी।
1: बिल्कुल, तो आइए आज शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हम उन सभी शिक्षकों को दिल से नमन करें जिन्होंने हमारे हाथों में सिर्फ किताबें ही नहीं दी बल्कि हमारे सपनों को उड़ान देने का हुनर भी दिया। और इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: उज्मा, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो गई हैं हमारी, तो क्यों ना हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के मैसेजेस भी शामिल कर लिए जाए हमारे गीत आपके नाम सेगमेंट में।
1: बिल्कुल, और हमने मोनिका अपने साथियों से कहा था कि वो भी हमें टीचर्स डे पे कुछ लिख भेजे, तो हमारे एक साथी हैं, नाम है इनका हर्ष भारद्वाज और धामपुर के रहने वाले हैं। धामपुर से हमें मैसेज भेज रहे हैं और ये हमें लिख भेज रहे हैं, मेरे फेवरेट टीचर थे मेहंदी हसन सर, उन्होंने हमें अच्छे राह पर चलना सिखाया।
0: टीचर्स का तो मतलब सिखाने का पर्पस ही यही होता है कि वो हमेशा हमें अच्छी राह पर चलना सिखाते हैं। और इसी के साथ हमें एक और खूबसूरत सा मैसेज मिला है, पता है, जो हमें मिला है आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान, भव्य चौहान, सीमा रानी और राघव चौहान। और ये लिखते हैं, सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार ये किस्सा बता रही है अपने स्कूल का कि दो बच्चों में लड़ाई हो गई और मैंने एक का फेवर कर दिया। तब गुरुजी ने कहा जब तक तुमसे ना पूछा जाए तब तक चुप रहना चाहिए और किसी की चुगली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो बात मुझे जीवन भर याद रहेगी। उसमें ये तो फनी हो गया ना।
1: और हमारे एक और हमारे साथी हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह उन्होंने लिख भेजा है, ये मैं भेज रहे हैं शाही मार्केट सोहरा जिला बिजनौर से, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, राफत चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी जी हैं। ये मैं लिख भेज रहे हैं, मुझे याद है मैं कक्षा 2 में था, हमारे टीचर का नाम था मास्टर इकरार अहमद। उन्होंने एक बात बताई थी जो आज तक मुझे याद है, कभी झूठ नहीं बोलना और अपने माँ बाप की इज्जत बराबर करना।
0: बिल्कुल, बहुत बराबर और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। अपने पेरेंट्स के हमेशा रेस्पेक्ट करिए, हम भी आपसे यही कहेंगे। और अपनी लाइफ में कभी झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, हमारे दोस्त हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत शिक्षकों के साथ की यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे एक प्यारे से साथी ने अपनी प्यारी सी एक टीचर का नाम लिख भेजा है और अपने प्यारे से टीचर को जो हमने कहा था कि अपनी याद भेज सकते हैं, ऐसी एक याद भेजी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन है। तो ये हमारे दोस्त हैं ग्राम गदारौना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन जी। और ये कह रहे हैं, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये आगे लिखते हैं दोस्तों कि मेरे सबसे पसंदीदा गुरु सुंदरलाल ऐशवाल है, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो ये
1: उसमें
0: बात
1: मतलब मुझे
0: बिल्कुल
1: लगता है कि आज अगर वो इनके टीचर कहीं सुन रहे होंगे इन्हें बैठकर, तो वो खुद पर एक प्राउड फील कर रहे होंगे,
0: बिल्कुल
1: है ना। और इन्हें भी कितना अच्छा लग रहा होगा कि इन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई और हम सबको पहुंचा रहे हैं इनकी बात।
0: बिल्कुल। तो मोनिका, हमारे एक और बड़े प्यारे से साथी ने बड़ा प्यारा सा मैसेज लिख भेजा है, जरा उसको भी
1: शामिल कर
0: शामिल किया
1: लेते हैं,
0: जाए।
1: बिल्कुल। और ये हमें मिला है जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से। लिखने वाले हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब। और इन्होंने लिखा है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले और सही मार्ग का बोध कराने वाले हमारे प्रिय गुरु को शिक्षक दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। अब आगे लिखते हैं, आपका मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं है, बल्कि वो छात्र के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारता है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक टीचर ही होता है वो जो दोहरी का काम करता है, एक बच्चे को निखारने का काम करता है। और जीवन के सफर में आपका साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते शब्द, शब्द का अर्थ हमें समझाते हैं। ऐसे आदरणीय गुरुओं को नमन जो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम दुनिया का सामना कर सके। बहुत खूबसूरत बात लिखी है ये भी आपने। और आगे लिखा है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपी जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी का ये दोहा आज भी गुरुओं के सम्मान में उनके स्थान को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है। मतलब उसमें इनका मैसेज जो लिखा है हमें मिला है,
0: मुझे लग रहा है बिल्कुल दिल से लिखा है,
1: सच
0: गहराई से
1: में
0: लिखा है।
1: एक एक शब्द, एक एक लाइन दिल
0: बिल्कुल
1: को छू गई है। तो क्यों ना इन्हें भी एक ऐसा गीत सुनवा दिया जाए जो इनके दिल को छू जाए।
0: बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनता है।

0: दोस्तों दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें मिला है और भेजने वाले हैं अनिल विनोचा जी, और ये हमें लिख भेज रहे हैं नगीना से, और इन्होंने हमें लिखा है, सच गुरु बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेशक गुरु बिना वाकई गुरु जीवन की कल्पना नहीं की
1: नहीं
0: जा
1: की जा
0: सकती।
1: सकती है।
0: गुरु खुद जलकर हमें हमें उजाला भरते हैं। टीचर सारी जिंदगी एक ही कुर्सी पर बैठा रहता है और अपने स्टूडेंट को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है।
1: उसमें पता है, मैं एक बात कहूं, इतनी सारी टीचर्स की, बचपन की और स्कूल की बातें हो गई है ना, तो मुझे भी याद आने लगा है अपना स्कूल और स्कूल के दिन में वो टीचर्स डे।
0: तो मोनिका, आपका भी वेलकम है हमारे प्रोग्राम में, तो आप भी जल्दी से बता दीजिए कि आखिर आपकी कौन सी याद जुड़ी है।
1: मतलब वो सुबह की असेंबली और दोस्तों के साथ बातें करना और टीचर्स को मिलकर कॉपी चेक कराना, लंच ब्रेक का इंतजार, और सबसे ज्यादा तो वो टीचर्स याद आते हैं जो हमारी छोटी छोटी गलतियों पर हमें डांटते थे, लेकिन हमारी छोटी सी कामयाबी पर खुश भी हो जाते थे। तब लगता था वो डांट और रूल्स कब खत्म होंगे कब खत्म होंगे, लेकिन आज वही डांट याद आ रही है यार। और मतलब मैं उन टीचर्स से कहना चाहती हूँ कि हम स्कूल से निकल गए हैं, लेकिन उनकी सिखाई गई बातें आज भी हमारे साथ हैं। तो चलते चलते प्रोग्राम का
0: आखिरी
1: मतलब
0: मैसेज भी शामिल कर लेते हैं, आखिरी नहीं
1: बिल्कुल
0: और भी आ
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमारे एक दोस्त है जिन्होंने मैसेज भेजा और ये हमें लिख भेज रहे हैं, गुरु वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है, ज्ञान की किरणों से जो है हमारे जीवन को उजाले से भर देता है।
1: बिल्कुल। तो इसी उजाले से हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और शामिल कर लेते हैं आज का ये आखिरी गीत, और आपको सुनवाते हैं

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं, आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। हम खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। और अपने साथी उज्मा को
0: और अपनी साथी मोनिका सैनी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने

0: था कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा था, नहीं पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर करते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैनवी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। और किसान भाइयों, ठीक हैं आप? भाई आप ठीक ठाक होंगे और भाई इस समय हमारे किसान भाई जो है खुश भी होंगे, क्योंकि भैया बारिश हो रही है, उनकी धान की फसल की सिंचाई हो रही है, क्योंकि धान की फसल में ही पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और भैया साथ में जो हमारी गन्ने की फसल है उसको भी लाभ हो रहा है।

ऐसी बात नहीं। और गन्ने की फसल में जो बरसात में एक रोग आता था पोका बोइंग, तो वो पोका बोइंग एक फंगस के द्वारा आता था, यानी कि कवक के द्वारा आता था। और ऐसी बारिश में वो रोग अपने आप ही ठीक हो जाता है। और हमारे किसान भाई देख ही रहे होंगे कि पोका बोइंग रोग अब दूर हो गया और हमारी फसल इससे उबर गई है और हमारी फसल में ऊपर को पत्तियां निकल गई हैं। खैर भाई, बारिश तो अच्छी हो ही रही है और बारिश के अनुसार ही किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं, अपने पशुओं का भी बारिश में ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाई अपनी जो फसलें हैं उसमें कीट और बीमारी की निगरानी भी हमारे किसान भाई करते रहें, चाहे वो उनकी बेल वाली सब्जियां हों या भैया टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, ये इस तरह की जो सब्जियां हैं उनमें इस मौसम में भैया कीट और बीमारी लगने का खतरा रहता है, तो भैया उनकी भी निगरानी करते रहें। और भाई यदि हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो भैया आज हमारे कार्यक्रम में कुछ विशेष आकर्षण है। आप जानते ही हैं कि भैया आज है माह का पहला शनिवार और पहले शनिवार को आपका पसंदीदा प्रोग्राम होता है हेलो लोकमंजरी। लेकिन भैया आपको आपकी पसंद के लोकगीत और रागनी भी हम हेलो लोकमंजरी में सुनवाएंगे। और आप इस कार्यक्रम में, आपको पता है कि हमें सीधे स्टूडियो में फ़ोन करते हैं और अपनी पसंद का लोकगीत या रागनी सुनते हैं। लेकिन भैया उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि आज एक और विशेष दिन है और भैया वो है 5 सितंबर। तो भैया 5 सितंबर को क्या विशेष दिन होता है ये भी आपको ध्यान आ गया होगा। तो भैया 5 सितंबर को हमारे देश में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और भैया शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आपको हम बता देते हैं। तो भाई देखिए, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 में हुआ था, तो भैया इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि ये प्रारंभ में एक शिक्षक थे और शिक्षकों के कल्याण के लिए, शिक्षकों के वेतनमान के लिए और भैया शिक्षकों के अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत से कल्याण के कार्य किए। तो इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन भैया हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो भैया ऐसी महान विभूति को हम शत शत नमन करते हैं और शिक्षक दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और भैया शिक्षक का क्या दर्जा होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी शिक्षक को बहुत ही ऊंचा माना गया है। आपने रामचंद्र जी को देखा होगा कि रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र के लिए क्या नहीं किया। और भैया आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को जो अपना हाथ का अंगूठा था, दाएं हाथ का अंगूठा, वो भी उनको दान कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है, हमारे जो कुछ समाज सुधारक हुए हैं जैसे कबीरदास जी हैं, उन्होंने शिक्षक का दर्जा अपने दोहे में प्रकट किया है। और आपने दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं तो सबसे पहले हमें किसके पैर छूने चाहिए, तो बलिहारी गुरु आपने। तो भगवान जी कहते हैं कि भैया पहले अपने गुरु के पैर छुओ, जिन्होंने भगवान के तक पहुंचने का रास्ता हमें बताया है। तो भैया गुरु का दर्जा जो है भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। और भैया एक श्लोक में भी आपने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो भैया इस प्रकार से हम गुरु की स्तुति करते हैं और गुरु को हम भगवान मानते हैं और माता पिता के बाद गुरु ही सब कुछ होता है। खैर चलिए, बातें तो आपसे काफ़ी होंगी और थोड़ी सी जो है हम इस समय चर्चा कंपोस्ट खाद पर भी करते हैं,
क्योंकि भाई कंपोस्ट खाद का भी हमारे खेती बाड़ी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और गोबर की खाद अब हमारे जो किसान भाई है वो अपेक्षाकृत कम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब गांव में किसान के साथ साथ जो मजदूर हैं उन्होंने भी पशु रखने कम कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और जो हमारे खेतों की मिट्टी है वो पशुओं द्वारा उत्पादित जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर है, यानी कि गोबर की खाद है भैया, उससे बहुत ही अच्छी उसकी उर्वरता बनती थी। और आजकल पशु कम हो रहे हैं, और पशु कम होने का कारण ये भी है कि भैया पशुओं को पालने में लागत ज़्यादा आ रही है और समय और धन भी ज़्यादा लग रहा है। खैर, उसकी पूर्ति के लिए हमारे किसान भाई हरी खाद और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। तो कंपोस्ट खाद का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई जो हमारे घर का कूड़ा करकट है, जो डिकम्पोज होने वाला है, यानी कि जिसका अपघटन हो सकता है, तो ऐसी जो घर की रोज़मर्रा की साग सब्जियों के छिलके हैं, या भैया कागज़ है, या इसी प्रकार से जो डिकम्पोज होने वाले यानी कि अपघटित पदार्थ हैं, उनसे जो कंपोस्ट खाद तैयार होती है वो हमारे खेतों में बहुत अच्छा काम करती है। और इससे हमारी मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, और मिट्टी के तापमान में वृद्धि होती है, या यूं कहिए कि भैया मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है। साथ में कंपोस्ट खाद से हमारी मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, और भैया कीट और बीमारियों के प्रति फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और भैया खेतों का जो पीएच मान है वो भी सही रहता है, और खेतों की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे किसान भाइयों की लागत में कमी आती है, और भैया ऐसे खेतों में अंकुरण परसेंट भी बढ़ता है। तो किसान भाइयों अपने खेतों में कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करें और अच्छी खेती करें, अच्छा लाभ लें। और भाई देखिए, लाभ हम लेंगे भैया हेलो लोक मंजरी का, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने किसान भाइयों को बता देते हैं अपना टेलीफोन नंबर, ताकि हमारे किसान भाई सीधे हमें स्टूडियो में फोन करके अपनी पसंद का लोकगीत या रागनी सुन सकें। तो भैया हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 94-57-07-82-88। जी हाँ, 94-57-07-82-88। और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो है 0-13-41-230-105। तो भैया जब तक आप ये नंबर हमें डायल करें, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: तो किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम हेलो लोकमंडी को।

0: अब देखते हैं कौन भाई लाइन पर है। हेलो लोकमंजरी।
1: हेलो लोकमंजरी सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार साहब, कौन साहब बोल रहे हैं, जरा अपना नाम बता दीजिए।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: अरे मुकेश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में। और देखिए, आज आपसे हमारी बात बहुत दिनों में हो रही है और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे किसान भाई भी आपका नाम सुनते होंगे बार बार, कोई आपकी फरमाइश में भी आपका हमें खत मिलता है और जो हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमें आपकी कॉल प्राप्त होती रहती हैं, चाहे आप कृषि जगत की बात करें, हेलो नजीबाबाद की बात करें या अन्य फ़ोन इन कार्यक्रम की बात करें। तो
1: वो तो
0: मुकेश जी,
1: सारे देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षक दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। मुकेश जी,
1: जी सर।
0: कैसी मौसम कैसा हो रहा है आज वहां का आपका?
1: सर हमारे यहाँ आज 12 बजे से अब तक लगातार बारिश हो रही है बहुत जोर से। जी
0: अच्छा, यानी कि आपके मुरादाबाद में वर्षा हो रही है।
1: अच्छी वाली सर।
0: जी चलिए, ये भी हमारे श्रोताओं को पता लग गया होगा। और अब आप बता दीजिए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: मिलकर देशवासियों
0: अच्छा, देशवासियों,
1: जी सर, ऐसे ही है, कुछ ज्यादा जरूरत
0: देशवासियों
1: नहीं है सर,
0: अपने देश का मिलकर नवनिर्माण करो।
1: निर्माण करो सर।
0: हाँ, तो ये ब्रह्मदेव आर्य की रागनी है। तो
1: जी सर।
0: मुकेश जी, आप और आपके जो परिवार वाले हैं, आपके साथी हैं, आपके श्रोता बंधु हैं, आप मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये जो रागनी है, इसे सुर दिया।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी।

0: दुनिया में स्थान करो देशवासियों अपने देश का मिलके नव।
1: किसान भाइयों, अब देखते हैं कि लाइन पर हमारे कौन श्रोता हैं। हेलो लोकमंजरी।
2: हेलो लोकमंजरी
1: जी,
2: जी को मेरा राम राम।
1: राम राम जी, राम राम साहब। कौन साहब हमसे बात कर रहे हैं, जरा अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं ग्राम गाधारोना, जिला हरिद्वार और उत्तराखंड से मदनगिरी बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता।
1: जी जी जी, मदनगिरी जी, आप वाकई में हमारे नियमित श्रोता हैं और आप जैसे बुजुर्ग श्रोताओं की जब हमें फोन पर जो है कॉल की प्राप्ति होती है तो हमें बड़ा आनंद आता है, और आप जैसे श्रोता जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बिल्कुल हम अपनी श्रोताओं के आधार पर बनवाते हैं। तो मदनगिरी जी, मौसम कैसा है आज वहाँ आपके?
2: कल से बरसात हो रही है जी, हल्की हल्की।
1: अच्छा अच्छा
2: जी, ठंडा हो गया है, बड़ा सुहाना मौसम है।
1: चलिए अच्छी बात है, मौसम सुहाना हो गया है। और
2: तो, हाँ जी,
1: इस सुहाने मौसम में आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
2: मैं सुनना चाहूंगा जीजा तू काला मैं गोरी घनी।
1: अच्छा, ये हमारा लोकगीत है, जीजा तू काला मैं गोरी घनी। तो
2: मैं जो हूँ ना, पहले सबसे पहले तो शिक्षक दिवस पर सभी को बधाई देना चाहता हूँ
1: जी जी,
2: देशवासियों को। और आज मुझे वो याद आ रहे हैं शिक्षक
1: जी,
2: इनकी वजह से मैं इस योग्य बना, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक ऐसे मन से आज बोल रहा हूँ, ये सब उन्हीं की देन है।
1: जी जी, बहुत अच्छा। और आपने अपने शिक्षक को अभी तक नहीं बोला? और हाँ, तो
2: मैं कुछ मित्रों के नाम लेना चाहता हूँ।
1: हाँ, जरा जल्दी से ले लीजिए।
2: हाँ जी, आचार्य सत्यवीर सिंह जी चौहान है
1: जी,
2: प्रकाश चंद जी है
1: जी,
2: और आशीष चौधरी जी है, राशिद अंसारी जी है, अमित धीमान जी है, सत्यपाल सिंह चौहान जी है।
1: जी जी, तो ये आपकी पसंद का लोकगीत हम सुनवाते हैं आपको, सुनिए आप भी और आपके साथी भी।

0: हेलो लोकमंजरी।
1: हेलो लोकमंजरी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार साहब, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं आशीष चौधरी बात कर रहा हूँ, सिवहारा जिला बिजनौर से।
0: अच्छा, सिवारा, आप सिवारा के ही निवासी हैं, कोई गांव है आसपास?
1: नहीं, सिवहारा के ही हैं
0: जी
1: सर।
0: जी तो आप हमारी रेडियो नियमित रूप से सुनते हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद को?
1: जी, बहुत अच्छी
0: तो
1: तरीके से
0: आसिफ
1: सुनता हूँ सर।
0: जी, देखिए आज तो वर्षा हो रही होगी।
1: वर्षा हो रही है जी, आज दोपहर से और हो रही है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: अब भी बारिश पड़ रही है।
0: ठीक। तो आसिफ जी, इस प्रोग्राम में आप आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: एक रागनी है कि माँ मैं जाऊंगा देश में
0: माँ
1: और
0: माँ मैं
1: देश
0: जाऊंगा
1: रहेगा
0: फौज
1: फौज
0: में।
1: में
0: जी,
1: और
0: देश रहेगा
1: देश रहेगा
0: मौज।
1: मौज में।
0: जी। लीजिए
1: ये
0: आसिफ जी,
1: रागनी सुना
0: आप
1: दीजिए
0: अपनी पसंद की रागनी सुनिए।
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।

0: अपनी पसंद का ये देशभक्ति गीत सुना, और अब देखते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में किस साहेबान की कॉल आती है। हेलो लोकमंजरी।
1: हेलो लोकमंजरी सर।
0: जी कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ,
0: अमित जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: किरतपुर के पास कसौर गांव से।
0: जी जी करसौर गांव से बोल रहे हैं आप, हमारे नियमित श्रोता हैं, आपकी कॉल भी हमें मिलती रहती हैं। तो अमित जी जल्दी से बता दीजिए, आज हेलो लोकमंजरी में आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर सूरज ने ली मांग रोशनी रजनी चंदा तारों ने,
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: और मैन पासिंग की बात की है सर।
0: जी जी जी तो लीजिए सुनिए। हाँ
1: कुछ नाम है सर मैं लेना चाहता हूँ।
0: हाँ जल्दी करिए, समय कम है।
1: श्री मदन गिरी जी,
0: जी
1: और आचार्य सत्यवीर सिंह,
0: जी
1: और हरपाल शास्त्री जी।
0: जी जी जी लीजिए, आप और आपके दोस्त सुनिए आपकी पसंद की ये रागनी।

0: सूरज ने ली मांग रोशनी, भाइयों ने भी अपनी पसंद की रागनी सुनी। और अब देखते हैं लाइन पर कौन हमारे श्रोता बंधु हैं। हेलो लोकमंजरी।
1: हेलो, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: तस्मीम बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर औरंगाबाद चांदपुर के पास।
0: औरंगाबाद चांदपुर के पास से, जिला बिजनौर से समीम अहमद बोल रहे हैं?
1: जी जी जी जी।
0: तो शमीम जी, स्वागत है आपका हमारे इस हेलो लोकमंजरी कार्यक्रम में। और आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं नियमित रूप से?
1: हम आप कार्यक्रम सुनते हैं, हम
0: जी
1: हेलो निजामाबाद सुनते हैं, लोक लक्ष्मी सुनते हैं।
0: तो आज हेलो लोकमंजरी में क्या सुनना चाहेंगे?
1: लोकगीत सुना दो, बढ़िया सा।
0: बढ़िया सा लोकगीत लीजिए, आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही अच्छा सा लोकगीत भाल सिंह और साथी की आवाज में।
2: हरी

0: हेलो लोकमंजरी।
1: हेलो लोकमंजरी भाषा नमस्ते। मैं उत्तराखंड सैनिकाल से गांव फेड़ से प्रकाश चंद बोल रहा हूँ जी। मैं
0: जी जी प्रकाश चंद जी, आज हेलो लोकमंजरी में क्या सुनना चाहेंगे जल्दी बता दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है।
1: आप दूर देश से लाया मनियारा गुब्बारा लेके आया।
0: अच्छा, चूड़ी लेके आया मनियारा। लीजिए सुनिए आपकी पसंद पर ये आपका प्यारा सा लोकगीत।
2: चूड़ी ले लो चूड़ी
3: चूड़ी।

अभी हमारे किसान बने सुना हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो लोकमंत्री, और भैया अगला हेलो लोकमंत्री होगा हमारा अगले शनिवार को 12 सितंबर 2026 को। तो भैया अगला लोकमंत्री कार्यक्रम हमारे किसान भाई सुनना न भूलें। और अब किसान भाई अगले कार्यक्रम तक अपने साथी नरेश पाल सिंह को दें अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें। श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समय याद रखिएगा संध्या 6:50 पर।

परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलों का आनंद लीजिएगा हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर। रात्रि 8 बजे ही संध्या कार्यक्रम होगा और रात्रि 8:30 पर क्रम रहेगा एक ही फिल्म से का।

कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्री रामचरितमानस गान प्रातः 6:30 पर और 6:40 पर होगा चिंतन। काव्यधारा में कल प्रातः 6:45 पर ऋतु अग्रवाल का काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकते हैं।

स्वास्थ्य चर्चा में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा जीवन शैली से संबंधित रोग और खेती की बातें। क्रम में कल प्रातः 7:10 पर बकरी पालन है लाभकारी व्यवसाय विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। सात बजकर 7:31 पर समय रहेगा जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का। शशिकला राजपूत के गाये रोहिलखंडी लोकगीतों का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं हमारी धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:20 पर। और महेंद्र सिंह चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत सुनिएगा लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर।

0: कल दिन में 12:05 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। फिल्मी संडे में कल दिन में 12:30 पर फिल्म रहेगी राजू बन गया जेंटलमैन। बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बालवाटिका कल दिन में 1:15 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक होगा कल दोपहर 2:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाप्त हुआ।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद। अभिषेक भैया।
1: हाँ पुनीता बहनी।
0: भैया देखो, अपने पर्यावरण में यहाँ संतुलन बनाए रखे के खातिर हमका फसलन के साथ साथ अपने खेत के रिमेड़न पे यहाँ या कोनो खाली पड़ी जगह हो ऊपर और पेड़ पौधा उनके साथ साथ हमका लगावे के हैं, जिकी खातिर वे पर्यावरण के साथ साथ हमार आमदनी बढ़ा सके।
1: बिल्कुल सही बात कहो बहनी। देखो हम जब बिरवा अपने मेड़े पर लगाए दी थे तो उसे का होते जो मेड़ होते वह कटत न हो की माटी खराब न होते और दूसरा तुम कहूँ तो रुपयों पैसा कुछ मिल जाते तो हमरी सब किसान पंचन बद आमदनी के रू साधन नीक बन जाते।
0: और अभिषेक भैया, पहले रहा जैसे हमारे सब के पास तमाम खेत जमीन होत रहा है, खेती योग्य जोन है, तमाम भूमि होत रहा है, मुला अब जो है जोत अपन कम हो जा रही है, जी की खातिर अगर हम कही कि अलग से हम बाग लगा देवे या अलग से नहीं हम अनाज उत्पादन कर लेवे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अगर हम खाली फसल उत्पादित करवे बिरवा बिरुख ना हुई है तब वो भैया काम न चली, तो इसके लिए जरूरी है कि अपने पर्यावरण में यहाँ संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल सही बात दीदी आप बता रही हो। और देखो इमा कुछ हमका सबका अलग तेने करे जरूरत न होते और बहनी सरकारों इके साथ में यहाँ सब्सिडी देते है बिरवा उपलब्ध करावते है कि अगर कृषि वानिकी आप खेती पाती के काम के साथ में यहाँ कर रहे हो तो उनके खातिर सब्सिडी दे थे और बिरवा उपलब्ध करावत है कि आप बिरवा लगाए कि यहाँ कृषि वानिकी अपने खेती पाती में यहाँ शामिल करो।
0: देखो हमने सबके खेती पाती के काम के खातिर हमका सबका तमाम तरह के जानकारी के आवश्यकता होते, तो भैया सुन ली जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब खेती से लेकर कारोबार तक दिखाई दे रहा है। योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की 82 लाख से अधिक महिला किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। प्रदेश में 10 लाख 58 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे कारोबार से जोड़ा जा रहा है। सरकार की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका असर यह है कि महिलाएं खेती और घरेलू कामकाज के साथ साथ अपनी आय बढ़ाने के लिए नए उद्यम शुरू कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए 2510 उचित दर की दुकानें भी आवंटित की गई हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने के साथ साथ गाँव की अर्थव्यवस्था और प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: प्रीता बहनी तो रही आज के लिए खबरें और अब बारी है आज के लिए बातें सुने के। आज के लिए बातन में यह है दुधारू पशुओं में बाझपन कारण और निवारण, इसके बारे में है बता रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी भैया, तो सुना जाए आज के लिए बातें।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं वहाँ कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे पशुओं में बांझपन की समस्या, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से पूर्व संयुक्त निदेशक पशु प्रजनन डॉक्टर पीके त्रिपाठी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये पशुओं में बांझपन है क्या?
7: पशुपालक बहनों एवं भाइयों नमस्कार। ये बांझपन होता क्या है, पहले तो ये पशुपालक समझ लें, जो पशु प्रौढ़ हो जाते हैं लेकिन गर्मी पर नहीं आते हैं, गर्मी पर आते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं या बार बार बच्चा फेंक देते हैं, कुछ स्थायी बांझपन होते हैं जिसे बंधता कहते हैं, ये उसी जगह पर होता है जहां पर बच्चेदानी उनकी डेवलप नहीं होती है या उनके जो अंडाशय जो है अंडाशय नहीं होता है और भी अनुवांशिक कमियां होती हैं जिसके कारण होता है। अब प्रश्न उठता है कि बांझपन जो है जिसे अस्थाई बांझपन कहते हैं वो हो कैसे जाता है
8: जी।
7: पशुपालक बहनों भाइयों आपने देखा होगा कि संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा एक संतुलित होती है। कभी कभी प्रोटीन की कमी के कारण या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण भी बांझपन हो जाता है। 70% बांझपन तो केवल खनिज लवणों की कमी से होता है
6: यानी कुपोषण के चलते।
7: कुपोषण और जब ये कमी होती है तो कुपोषण होगा तो जिसके कारण पशु आप देख तो रहे हैं कि ऊपर से बहुत ही मोटा तंदुरुस्त है लेकिन अंदर से अंदरूनी तौर से वो कमजोर है वो बच्चा नहीं दे पा रहा है और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो पशु फिर से गाभिन होने के लायक हो जाता है। दूसरा कारण एक और है कभी कभी होता है क्या

0: ये एक पशु ब्या गया और ब्याने के बाद अगर वो 60 से 90 दिन पर गर्मी पर नहीं आया है तो ये भी बांझपन का कारण है। अब इसके पीछे क्या है कि बच्चेदानी के अंदर हो सकता है कि संक्रमण हो सकता है कभी कभी ये रुक जाती है उसको निकलवाने में हो, ये दो तीन कारण है
1: संक्रमण के कारण।
0: और इसमें कभी कभी होता क्या है कि वो पशु दूध तो दे रहा है लेकिन हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं तो उससे कमजोर हो जाता है। तो ब्याने के बाद अगर कमजोरी हो गई है तब भी बांझपन हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी जैसे गाभिन हुआ जानवर और 2-3 महीना बाद पता चला कि संक्रामक गर्भपात हो गया।
0: हाँ, ऐसा है कि बांझपन का मुख्य कारण तो संक्रमण नहीं है लेकिन यह संक्रमण जैसे अंदर ब्रुसेलोसिस का संक्रामक गर्भपात का जो एक कारण है वो अगर अंदर रह गया तो 3 महीने पर वो अपना बच्चा फेंक देगा। विब्रोसिस जिसके कारण यह भी संक्रामक रोग है जिसके कारण 7-8 महीने पर बच्चा फेंक देगा जिसको हम
1: अस्थाई बांझपन है।
0: अस्थाई है और जिसको कि हम सही कर सकते हैं। अब एक और तीसरा और कारण है ये हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये बनता है, जब इसका डिसबैलेंस हो जाएगा उस समय भी पशु जो है बच्चा फेंक देता है या गर्मी पर नहीं आता है। और चौथा जो बहुत ही जबरदस्त कारण है वो ये है मैनेजमेंट प्रबंधन, कि हमने हीट पर आई है और हमने समय से उसको गाभिन नहीं करवाया। पशुपालक भाइयों एक और चीज देखें कि 12 से 18 घंटे पर
1: हाँ।
0: अगर उसको गाभिन करवा दिए चाहे सांड करवा या उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा। दूसरा कारण ये है जो हमारा सीमेन है वीर्य है वो उतना गुणवत्ता वाला नहीं है तो इसमें भी जब वो नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि बांझपन हो गया। एक और है गर्मी बीत चुकी है और गर्मी के समय में जब कभी गर्मी का या सर्दी का स्ट्रेस हो जाता है तनाव हो जाता है इसमें भी बांझपन की समस्या होती है।
1: डॉक्टर साहब, पशुओं में बांझपन की जो समस्या है उसके कारण पर आपने बहुत कुछ बताया, अब ये बताएं कि इसका निवारण हो कैसे।
0: अब जैसा कि मैंने पहली चीज बताई कि उसको संतुलित आहार दें, संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। अब प्रोटीन कैसे हुआ, दाल की चूनी हो गई इसमें प्रोटीन है। दूसरा है कि कई ऐसे दालें जो हैं या दूसरे मक्के हैं उसके ऊपर वाला तो इसमें भी प्रोटीन, या सोयाबीन का मील जो होता है जिसमें भी प्रोटीन है एक तो इसको बढ़ा दें। दूसरा खनिज लवण, जैसा देखा गया है कि गांव में अक्सर खनिज लवण नहीं देते हैं तो अगर उसको 50 ग्राम खनिज लवण रोज देना शुरू कर दें,
1: छोटे से लेके बड़े जानवर,
0: छोटा जो जानवर है उसको तो आप कम देंगे, जो बड़े जानवर हैं
1: गाय और भैंस,
0: गाय भैंस उसमें आप 50 ग्राम कम से कम, और जहां पर विकट समस्या होती है वहां पर तो हमारा जो पर्सनल अनुभव है 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर अगर आप बढ़ा दें 10 दिन तक और उसके बाद फिर 50 ग्राम आप कर दें तो निश्चित है कि वो पशु गर्मी पर आ जाता है। अब यहीं पर भी एक और है प्रश्न उठता है कि अगर हमने मिनरल मिक्सचर खनिज लवण दिया तो पशुओं के गर्मी पर तो आ जाएगा, रुकने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एक तो ये है। दूसरा जब कभी पशु ब्याए तो उस समय बच्चेदानी को साफ करने की औषधियां भी देनी चाहिए
1: ताकि उसके कचरा साफ हो जाए,
0: कचरा पूरा साफ हो जाए बचे ना। और तीसरा एक और निवारण है जिसमें कि पशुओं को ठीक तरह से साफ जगह पर रखना। अब सफाई है नहीं और हमने उसकी एआई करवा दी तो उसमें भी गंदगी जा सकती है,
1: यानी प्रबंधन महत्वपूर्ण।
0: प्रबंधन तो बहुत ही, माने आप ये 70% खाना और 30% प्रबंधन जिसमें कि सीमेन हुआ वीर्य हुआ और या उसका सांड हुआ या दूसरी चीजें हुई वो इसमें आ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, प्रबंधन की बात हो रही है तो आहार व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है, खनिज लवण के साथ साथ सूखा चारा हरा चारा भी
0: निश्चित। अब आपको एक छोटा सा टुटका मैं बता दूं कि गेहूं आप लोगों के घर में होता है, जहां कहीं पर बांझपन की समस्या हो पाव भर गेहूं को आप पानी में भिगो दे और उसका जब अंकुरण हो जाए तो उसको देना शुरू कर दें,
1: यानी जवारा गेहूं का,
0: जवारा गेहूं वो 15 दिन तक लगातार आप दें मिनरल मिक्सचर खनिज लवण के साथ, तो जितनी भी समस्याएं घरेलू चीज है क्योंकि ये जवारा गेहूं से उसके अंदर की प्रोटीन की बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी
1: और विटामिन ई,
0: विटामिन ई बढ़ जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि ए बी डी ई ये बहुत आवश्यकता है तो ये बढ़ जाएगा। आपको बाहर से इंजेक्शन लगवाने जैसे कि कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा लें तो इंजेक्शन इन विटामिन का होता है, इंजेक्शन जो है इन मिनरल्स का, इन खनिज लवण का होता है, तो अगर आप इस तरह से अपने घर में करें तो निश्चित है कि कारण और निवारण दोनों हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जहां समस्या आती है कि जानवर कंसीव कर रहा है और उसके बाद गर्भपात हो जाता है तो ऐसी अवस्था में पशुपालक भाई करें क्या,
0: जहां पर इस तरह के गर्भपात होते हैं तो वहां पर तो एक तो पहले कि डॉक्टर से चेक करवाना है कि क्या कारण है क्यों गर्भपात, क्योंकि गर्भपात होने के कारण भी बहुत है। अगर जानवर बहुत तेज भागा उसमें कभी या गिर गया या एक्सीडेंट हुआ उसमें गर्भपात के कारण हो सकते हैं। तो एक तो ये देखें, दूसरा इसमें डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्टेंसी। कभी कभी होता क्या है कि 3 महीने पर गर्भपात हो गया और हमने सोच लिया कि ये तो ब्रुसेलोसिस या संक्रामक गर्भपात का कारण है, जबकि वो नहीं है, दूसरा और भी कारण है। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी हुई उसमें भी गर्भपात हो जाता है गर्मी के सीजन में,
1: और जलवायु परिवर्तन,
0: जलवायु परिवर्तन बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन हुआ उस समय भी गर्भपात का। कभी कभी ये खुरपका मुंहपका बीमारी होती है उसमें भी गर्भपात हो जाता है। तो ये सब कारण को जान करके तभी हम आगे बढ़े, और अगर 2-3 बार हो रहा है तो निश्चित आप समझिए कि ब्रुसेलोसिस संक्रामक गर्भपात की बीमारी है, जिसकी की जांच
1: राजकीय
0: पशु चिकित्सालय वहां पर आप कहें तो वहां से जांच का भी इंतजाम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में बांझपन कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: पशुपालक बहनों भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 94-15-15-28-98 94-15-15-28-98 94-15-15-28-98।
1: डॉक्टर पीके त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और पशुओं में बांझपन है क्या, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिषेक भैया,
3: हाँ बहनी,
2: चारों तरफ रिमझिम गिरती फुहारें और सब तरफ लहलाते हुए धान के खेत, और वहम भैया अगर हरी हरी चुनरिया रंगाई दिन जाए तो भैया सब जने एक्के में मिल जाए,
3: बिल्कुल मजा आए जी बहनी।
2: है ना, तो सुना जाए भैया यू लोक गीत, मोरी चुनरी रंगाई दो। स्वर है अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना का।

0: वाह बहनी का बढ़िया गीत सुनाओ, सब पंचन का बड़ा निक लाग हुई कहते ने हमका तो बहुत निक लाग है। तो हम जान रहे हैं कि पंच भैया जो सुन रहे हुए है ना एकदम गदगदाई हुई है।
1: हाँ।
0: तो अब देखो यो गीत तो सुनाए हो।
1: हाँ।
0: अब फिर से अपने बीच के कोई किसान जोन अपनी खेती पाती में नए नए तकनीक का इस्तेमाल करके खेती पाती करते हैं वह में के बीच में अपने पास आवत है, अपन जानकारी देते हैं, अपन अनुभव बतावत है, जिसे और किसान पंच भैया सीख लेते हैं।
1: तो अभिषेक भैया आज के किसान हैं राम किशोर वर्मा भैया, जो बता रहे हैं औषधीय फसलों की खेती के बारे में।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के दबिंदापुर गांव, जहां औषधीय फसलों की खेती के लाल राम किशोर वर्मा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। राम किशोर भैया नमस्कार। राम किशोर भैया, आप औषधीय फसलों की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब, इतने समय मंडलपाड़ी, जलरंभी और थोड़ा जुड़ी भी है।
2: और बकोपा?
3: बकोपा और जलरंभी जिसे बोलते हैं।
2: अच्छा, जल ब्राह्मी।
3: तो डॉक्टर साहब जलरंभी।
2: कितना कितना रकबा है आपका?
3: मंडलपाड़ी का एक 5 एकड़ रकबा है लगभग, और जलरंभी जिसे बकोपा कहते हैं उसका 2 एकड़ रकबा है।
2: तो आज हम बकोपा उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: बकोपा की शुरुआत दस्ताव हमारे यहाँ हम 3 वर्षों से कर रहे हैं।
2: तो कहीं से प्रेरणा आपको मिली होगी?
3: आप मंडोपाड़ी की खेती करते, तो जो मंडोपाड़ी की खेती दस्ताव ने करवाया था, डॉक्टर साहब जी के पास में रहते हैं, तो उन्होंने जलभंगे के लिए बताया कि ये आप खेती करिए, इसको सकते हैं।
2: तो बकोपा की बुआई या रोपाई के पहले से लेकर के जल ब्राह्मी यानी बकोपा की रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: इसमें डॉक्टर साहब जुलाई के महीने में बुआई सबसे बेस्ट होती है, और उसकी बुआई धान जैसे खेत तैयार करके पानी में फिर जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बिखेर दिया जाता है खेत में, उसके बाद झाड़ी से दिया जाता है।
2: यानी सकर्स पूरे खेत में बिछा दिए जाते हैं?
3: जी, सकर्स नहीं, ऊपर का जो हर्ब होता है।
2: अच्छा,
3: जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को काट करके फिर खेत में बिखेर देते हैं।
2: तो जमाव कितने दिन में हो जाता है?
3: जमाव तुरंत बोने के दूसरे दिन से ही उसकी बढ़वार शुरू हो जाती है।
2: उसके बाद?
3: उसके बाद फिर 1 हफ्ते में उसको जैसे खाद और पानी जो देना है, फिर बीच में निराई करना होता है, तो जो खरपतवार आते हैं और लेबरों द्वारा जो है खरपतवार निकाले जाते हैं।
2: तो फसल की भूख कैसे मिटाते हैं, कब मिटाते हैं, कितना मिटाते हैं?
3: फसल को बरसात सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है इसको।
2: जी,
3: उसके बाद में भी खाद देते हैं और आवश्यकता अनुसार नीम की खली या सरसों की खली भी दे देते हैं।
2: अच्छा, बीच बीच में?
3: जी।
2: तो फिर इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं बराबर?
3: सिंचाई लगभग हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी हो जाती है, जैसे बारिश में तो सिंचाई नहीं करना पड़ता है।
2: हाँ, तो पहली कटाई करते कब है?
3: पहली कटाई जैसे हम जुलाई के महीने में बुआई की है, तो पहली कटाई अक्टूबर या नवम्बर के महीने में आएगी।
2: और उसके बाद कितने दिन के अंतराल पर?
3: फिर मार्च में आएगी, और मार्च के बाद कटाई आती है।
2: अच्छा, साल में 3 कटाई होती है। बकोपा उत्पादन में और कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं पूरे साल आप?
3: पूरे साल में इसको खरपतवार से नियंत्रण करना, जैसे लेबरों द्वारा खरपतवार निकालते हैं, उसके बाद में कटाई से लेकर सुखाई तक ध्यान देना जरूरी है।
2: जो आप बकोपा यानी जल ब्राह्मी पैदा करते हैं उसको बेचते कहाँ है?
3: उसको जो हमारे संतुला वाले व्यापारी हैं, जैसे डाबर वाले हैं और कई कंपनियों के एजेंट जो आते हैं हमारे यहाँ लेकर जाते हैं।
2: हाँ, तो एकड़ में बात करें कि जो जल ब्राह्मी है यानी बकोपा उत्पादन आप कर रहे हैं 2 एकड़, उसमें लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
3: 1 एकड़ में पैदावार की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल सूखी हर्ब एक कटाई में निकल जाती है।
2: पूरे साल में
3: एक कटाई में?
2: अच्छा, एक कटाई में?
3: जी, और 3 कटाई की बात करें तो लगभग 70 से 80 क्विंटल 90 क्विंटल तक आ जाती है एक साल में।
2: और भाव क्या मिलता है आपको?
3: भाव इसका 40 रुपए से 50 रुपए किलो तक रहता है।
2: तो कुल बचत कितनी होती है आपकी एकड़ में?
3: एक एकड़ 2.5 लाख रुपए बचत हो जाती है और लगभग 2 लाख रुपए से कम ही लगभग 1,80,000 के आसपास तीनों कटाइयों में खर्च आ जाता है। कटाई और जो हमारा खाद और पानी और लेबर सब कुल।
2: चूंकि पिछले कई सालों से लगातार आप औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं तो कहीं से आपको प्रेरणा मिली होगी, कहीं से आपको सीख मिली होगी?
3: जो हम मंडपाड़ी की खेती करते थे तो उस जो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आते थे उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। तो पहले थोड़ी एरिया से शुरू कर रहे थे जी, फिर उसके बाद में हमको लाभ मिला तो धीरे धीरे इसको हम बढ़ाना शुरू कर दिए।
2: सीमैप संस्थान से भी कुछ मदद मिलती है?
3: सीमैप संस्थान से मदद मिलती है, जैसे ट्रेनिंग वगैरह है, जमीन की खेती करते हैं तो सीमैप के सहयोग से भी हमको लाभ मिला है।
2: जो अब तक का आपका तजुर्बा है औषधि फसलों की खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
3: और किसान भाइयों बहनों को हम यही बताना चाहेंगे कि जो आम तो खेती हो रही है धान गेहूँ गन्ना जैसे, उसकी अपेक्षा औषधि एवं सेवन फसलें बहुत ही लाभदायक है, सौदा कम होता है, लाभ अधिक होता है।
2: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
3: जी हमारा मोबाइल नंबर 94 52 38 63 57 9452386357 94 52 38 63 57।
2: चलते चलते और क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
3: अब हम जो अब जब से औषधि खेती करना शुरू किए हैं तब से हमारा तो विकास हुआ ही है, साथ में जो हमारे खेत में 15 लेबर काम करते हैं उनका भी विकास हुआ है। तो हम सभी किसान भाइयों बहनों से यही कहना चाहेंगे कि जो परंपरा खेती खेती है उसको छोड़ करके औषधि एवं सघन फसलों की खेती अपनाएं।
2: राम किशोर भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप औषधि फसलों में मंडूक पर्णी और जल ब्राह्मी की खेती कर रहे हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में आपको अच्छी आमदनी हो रही है, आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभिषेक भैया।
4: हाँ बहनी।
3: भैया, हमारे सबका कार्यक्रम अपने पंच बहन के यहाँ कई स्वागत है, या इके बारे में हम कुछ और बतावा चाहते हैं, हमसे पंचन से कुछ जानना चाहते हैं, हाँ। तो इके खातिर लिख लें हमारा पता,
4: हाँ।
3: तो भैया पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
4: तो भाई ना, यूँ तो हमारा पता है जिसे पंच भैया जोन है चिट्ठी पाती लिख सकते हैं। मुलाई के साथ में जोन पंच भैया हमका ईमेल करा चाहते हैं तो वो हमारा ईमेल आईडी लिख लें। ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
3: तो भैया यूँ तो रहा अपने कार्यक्रम का पता, और अब अपने कार्यक्रम का समय यह समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षकों समेत देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से साकार होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। कहा, उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ाएं शिक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों समेत देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉक्टर इफ्तखार खान शामिल हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में बीएचयू के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तखार खान ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
4: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया, न कि कॉपी कराने पे, और आज पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। उन्होंने स्क्रीन की लत कम करने के लिए खेलकूद, बाहरी गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
5: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों में पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
6: जो टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जोड़ा, ये केवल ट्रिपल टी तक सीमित नहीं था। इसमें शिक्षक का सम्मान है, इसमें विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, और इसी कार्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने विद्यालयों में वे संसाधन उपलब्ध करवाए जिन संसाधनों का अभाव दशकों से हमारा ये शिक्षक समुदाय महसूस करता था। आपने देखा होगा 2017 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3,000 रुपये, आज मिलता है 18,000 रुपये। अनुदेशकों का मानते अब 17,000 रुपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है।
0: राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास को रफ्तार दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जनपदों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी

0: वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस आपदा में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव, एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
0: राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्ती पार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ के बाद जमा मलबे और गंदगी की सफाई कराने, पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मंदाकिनी की रिकॉर्ड बाढ़ ने रामघाट समेत तपोभूमि के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। 7 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद नदी का जल स्तर घटा तो नुकसान की तस्वीर सामने आई। रामघाट में तुलसी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। करीब 100 मीटर सड़क और लगभग 170 विद्युत पोल बाढ़ की चपेट में आए। फुट ओवर ब्रिज की एलईडी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कैमरे भी बह गए। कई मठ मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से जिले के 36 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 500 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन द्वारा सफाई, राहत और मरम्मत कार्य लगातार जारी है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षकों समेत देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से साकार होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। कहा, उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाएं शिक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोताओं लीजिए सुनिए परवेज मेहंदी की गाई चंदा गजलें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत परवेज मेहंदी की गायी चंदा गजलें।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ हमें उन दिनों की याद दिलाने लगती है जब न कोई जल्दी थी न कोई चिंता, बस अपनों का साथ और सुकून के कुछ पल हुआ करते थे, है ना? जी हाँ, बीते हुए वही खूबसूरत दिन दिल को आज बार बार पुकारते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे ही बेहद खूबसूरत गीत से जो हमें फुर्सत के उन दिनों की याद दिलाता है। आइए सुनते हैं फिल्म मौसम का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और भूपेंद्र की। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत मदन मोहन का है।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ गुलजार का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में फिल्म थी मौसम। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब दिल की उदासी ही हमारी साथी बन जाती है, लेकिन यही तो गीत संगीत की खूबसूरती है। श्रोताओं, ये हमारे गम को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल देती है। इसी भाव को अब आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म मनचली का गीत, आवाज किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थी मंचली। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है गीत संध्या और श्रोताओं आइए अब कार्यक्रम को और खुशनुमा करते हैं। प्यार में श्रोताओं नोकझोंक हो, रूठना मनाना हो और साथ हो उस दौर की सुरीली आवाजों का, तो गीत अपने आप दिल में उतर जाते हैं, है ना। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का ये सदाबहार गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आपने सुना, शबूसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, जब प्यार सच्चा हो तो इंसान अपने प्रिय के लिए बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, है ना। लेकिन प्यार की यही दुनिया कभी कभी सवाल भी करती है, क्या जिसे अपना माना वो सचमुच हमारा हुआ। ऐसे ही भावों को आवाज देता है अगला गीत। फिल्म है साजन की सहेली, आवाज सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत उषा खन्ना का।

आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित को, फिल्म थी साजन की सहेली, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार उषा खन्ना। और श्रोताओं, आइए अब चलते हैं यादों की उस दुनिया में जहां कोई दूर होकर भी दिल के बेहद करीब रहता है। जी हां, कुछ चेहरे, कुछ बातें और कुछ रिश्ते श्रोताओं ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी हमारी यादों से कभी मिटा नहीं पाता। तो आइए इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म आम्रपाली से आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

अश्रोताओं, अब इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ आज का गीत संध्या यहीं तक। फिर मिलेंगे कुछ नए नगमों और कुछ पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए रेणु कोटनाला को। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के कुछ गीत। इन गीतों को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ।

एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के कुछ गीत। इन गीतों को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने। लीजिए सुनिए आप कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक का ही गाया हुआ। फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

0: एक ही फिल्म से क्रम में श्रोताओं, आज हमने आपको सुनवाए फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के कुछ गीत। और अब इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणादायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
3: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
3: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
3: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
3: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and

0: spirit of humanity first, because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है. 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई. इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई. इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया. नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया. एक रिपोर्ट.
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए. मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके. सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती.
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है. नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है.
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड. हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं. हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं.
6: टेलिंग दी स्टोरीज विद रियल प्लेशर.
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं.
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान. पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए. expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं.
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए. expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने. ये

0: आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pench Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: द प्राइम मिनिस्टर सेड एसआरसीसी हैज गिवन जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ग्रो एंड मेक अ डिफरेंस ओवर द इयर्स। मिस्टर मोदी सेड द कॉलेज हैज डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स मेकिंग अ मार्क फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ही टर्म्ड द एलुमनाई ऑफ एसआरसीसी एज वेरी स्पेशल एंड द ओजीज। द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट फॉर्म ऑफ अनाउंसमेंट

0: उन्होंने SRCC के साबिक तलबा को बहुत खास और द ओजीज करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली भी SRCC के एक तालिब इल्म थे। जनाब मोदी ने कहा कि SRCC के साबिक तलबा ने आर्ट से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: उधर तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में आला मेयार बरकरार रखने पर SRCC की सताइश की। उन्होंने कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निजाम बन गया है। वजीर आजम मोदी ने कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत के लिए SRCC जाते हुए दिल्ली मेट्रो में सफर किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि असातजा की पूरी इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातजा सीखने और सिखाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज यौम असातजा के मौके पर एक मजमून में सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा में आजाद अंदाज फिक्र की हौसला अफजाई और उनके तजस्सुस को कुव्वत बख्शने, सवाल पूछने के रुझान को बढ़ावा देने और बहस मुबाहिसे और फैसला करने की उनकी सलाहियत को संवारना तदरीस के सबसे मुफीद और समरावर पहलुओं में शामिल हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह की बाईसे तरगीब तालीम के जरिए ही कारोबारी अफराद, साइंसदान और तख्लीकी फनकार तैयार हो सकते हैं। इससे कबल सदर जमहूरिया ने कहा कि म्यारी तालीम के जरिए ही विकसित भारत मुमकिन हो सकेगा। यौम असातजा के मौके पर नई दिल्ली में टीचर्स को अवार्ड दिए जाने की कौमी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि जो माशरा अपने असातजा का एहतराम करता है वो सही मायने में एक तरक्की पसंद माशरा है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि बहुत से तलबा इक्तसादी एतबार से कमजोर कुनबों से आते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं या जो गांव के मामूली स्कूल से बड़े शहर के स्कूलों में आते हैं। उन्होंने कहा कि असातजा की यह खसूसी जिम्मेदारी है कि वो इन तलबा में एतमाद पैदा करें और इस तरह के सभी तलबा की हौसला अफजाई करें जो किसी भी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला है।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: भारत और नेपाल की बचाव टीमें चिली में सुरंग में बचाव मिशन जारी रखे हुए हैं और सुरंग के अंदर से भारी मलबा, पानी और कीचड़ निकाल रही हैं। नेपाल में भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव ने आज कहा कि सियाफ्रूबेसी के नजदीक सुरंग तक रसाई के लिए एक सड़क बनाने का काम भी जारी है ताकि बचाव कार्रवाई में सहूलत पैदा हो सके। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि दुश्वार गुजार और तंगवादी का इलाका होने की वजह से बड़े हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। इस मुश्तरका कोशिश से भारतीय माहिरीन और नेपाली दिफाई अफवाज के दरमियान सरहद के आर पार कुदरती आफत की सूरत में मदद और तकनीकी इश्तराक उजागर होता है। इस दौरान नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,344 हो गई है। 8 मुतासर अजला में बचाव कार्रवाइयां जारी हैं जबकि तकरीबन 5,000 अफराद अब भी लापता हैं। 13,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से बदस्तूर मामूलात जिंदगी मुतासर है। दरियाए गंगा और दीगर अहम दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इंतजामिया मुतासर अफराद की मदद के लिए जंगी पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। पेश एक रिपोर्ट।
3: गंगा, गंधक, कोसी, बूढ़ी गंधक, पुनपुन और घाघरा दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गांधी घाट, बांका घाट और पंडारक में दरियाए गंगा सैलाब की सबसे ऊंची सतह पर बह रहा है। सारण जिले में त्रिलोचक के नजदीक माही दरिया पर 20 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इस मकाम पर SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। कुदरती आफत के बंदोबस्त के महकमे के मुताबिक

0: 11 जिला में 50 ब्लॉक की 201 पंचायतों में तकरीबन 10 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब से मुतासिर अफराद को मदद फराहम करने के लिए कम्युनिटी किचन के जरिए अब तक 1,20,000 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया गया है। इस दौरान मुतासिर इलाकों में 50 मेडिकल कैंप, 19 बोट एम्बुलेंसेस, 900 किश्तियां और मवेशियों के लिए 36 कैंप सरगर्म हैं ताकि सेहत की देखभाल तक रसाई और महफूज नकल हमल को यकीनी बनाया जा सके। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने बामायने इख्तलाफ राय और बहस मुबाहिसे के कल्चर की अहमियत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम के हिस्से के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के वफूद से खिताब किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसाफ की बरवक्त और मुनासिब फराहमी जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह याद दिलाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरह सबसे मुमताज तालीमी मरकज हुआ करता था, जहां दुनिया भर के तलबा और तहकीकारों को किसी तरह की तफरीक या बंदिशों के बगैर दाखिला मिल जाया करता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीती जागती नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने आज कहा है कि जहनी सेहत मजमू सेहत और तंदरुस्ती का एक लाजमी हिस्सा है और इसका जिंदगी में कारकर्दगी और क्वालिटी से करीबी ताल्लुक है। नई दिल्ली में एक न्यूज मैगजीन की जानिब से मुनक़िदा जहनी सेहत से मुतालिक नौजवान भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान और बालिग अफराद भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है और उनकी अच्छी सेहत मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की की समत तय करेगी। मोहतरमा पटेल ने इस बात को उजागर किया कि इस आबादी में तेजी से बढ़ती हुई जहनी बीमारी तश्वीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस चैलेंज से निमटने के लिए जहनी सेहत से मुतालिक कौमी प्रोग्राम में तेजी पैदा की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जहनी सेहत से मुतालिक बेदारी और स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। साइंसी और सनती तहकीक की कौंसिल मरकजी सड़क तहकीकी इदारे CSIR CRRI ने आज नई दिल्ली में अवामी कामकाज के महकमे से वाबस्ता इंजीनियरों के लिए एक खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन के मेयारी तरीक़ाकार पर तवज्जो मरकूज की गई ताकि कौमी राजधानी खित्ते में शहरी सड़कों को सरसब्ज बनाने की राह हमवार की जा सके। जगदलपुर में कौमी तहकीकती एजेंसी की खसूसी अदालत ने मुख्तलिफ इल्जाम के तहत झीरम घाटी माओनवाज हमले के मामले में सभी 10 कसूरवारों को मुलजिम करार दिया है। इस मामले में कुल 11 अफराद पर मुकदमा चल रहा था, जिनमें से एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई। अदालत ने 2 खवातीन समेत 29 में से सभी 10 मुलजिमों को कत्ल का कसूरवार करार दिया गया, जबकि दीगर 15 को इकदाम कत्ल का कसूरवार पाया गया। सजा की मुद्दत से मुतालिक फैसला 16 सितम्बर तक महफूज रखा गया है। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने माहौलियाती मुस्तकबिल को महफूज रखने की खातिर गिद्धों के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया है। आज गिद्धों के बारे में बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि गिद्ध माहौल को साफ रखने के लिए फितरत का एक हिस्सा है और ये माहौलियाती निजाम को साफ सुथरा रखने, बीमारियों को फैलने से रोकने और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों को महफूज रखने के भारत के सबसे कामयाब मकामात के तौर पर उभरे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दरमियान इन 2 मकामात पर 29 गिद्ध छोड़े गए थे और उनके जिंदा रहने की शरह 78% तक पहुंच गई। आज खबरों में कहा गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर 72 घंटे तक हमले रोके जाने का हुक्म दिया है। आज क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर पुतिन ने हुक्म दिया है कि आज आधी रात से आइंदा 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अमन बातचीत के लिए अमरीकी एलचियों के कीव के दौरे के पेश नजर यह फैसला किया गया है। अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरपर्सन महमूद अली यूसुफ ने अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली की उस करारदाद का खैर मकदम किया है जिसमें आलमी सतह पर नक्शों में मसावी कुर्रे अर्ज से मुतालिक नक्शा खींचने के तरीके को इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई की गई है, जो अब तक वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए गए मर्केटर तरीक़ेकार की जगह लेगा, जिसमें बर्रे आजमों के रकबे के साइज की सही अक्कासी नहीं होती थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने पीर तक शिमाली और शिमाल मशरकी रियासतों, जेली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, बिहार, मशरकी राजस्थान, दिल्ली और

0: और खवातीन क्रिकेट में दुबई के दुबई बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खवातीन एशिया कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने भारत की जीत के लिए 56 रन का निशाना दिया है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में GDP की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तिसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में SRCC के तलबा से खिताब किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद और साइंसदान तैयार करने के लिए आजाद तर्ज फिक्र अख्तियार करने वालों में असातिज़ा के रोल को उजागर किया है। भारत और नेपाल अचानक सैलाब से मुतासर नेपाल में पनबिजली प्रोजेक्ट टनल्स के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए सबसे कामयाब महफूज मकामात के तौर पर उभरे हैं। शिमाल मशरकी रियासतों बिहार और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। व्यक्ति और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म भूषण ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
2: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था, और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था, और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं, और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे, अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक

0: कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बाँच ली मैंने व्यथा की, बाँच ली मैंने व्यथा की, बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बाँच ली मैंने व्यथा की, बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बाँच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा, गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथेय संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथेय बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसा कर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी, और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था, लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है, यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में, मनोहारों में, क्या आंसू में, उद्गारों में, आवाहन में, अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, तो अब क्या अनुनय और क्या मनोहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार, अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं। आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वह अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं। जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं, कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: तो कहते हैं, महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात देखते हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्या थी, लेकिन तब तो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निजाम में जाके गीतिका तत्व आ गया मुझे और मैंने मानो दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुककर दोहरे हो चुके पसीने से तरबतर मेहनत कश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साए में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
3: हर सड़क पर इस नजर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
2: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहस से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी वह सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
4: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
5: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
4: जी,
5: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
4: जी,
5: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
4: जी।
5: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
4: जी।
5: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदर्श मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
4: जी,
5: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
4: जी।
5: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
4: जी।
5: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बनी।

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो
1: बिल्कुल
0: शब्दकोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल गुफ्तगू।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना इसका क्या मतलब। तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत के गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी बिल्कुल,
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय वो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक

0: शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं, पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद। ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
1: जो एक रक्षा वाला भी समझता,
0: रक्षा वाला भी समझ सकता
1: और एक प्रोफेसर भी समझता,
0: एक प्रोफेसर भी समझ सकता।
1: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इशारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
0: हाँ, मैं
1: किसी पुल
0: सा,
1: अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो संगठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है
1: जी। जी
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार

0: अखबारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में खा क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। खा से खा क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

0: ये आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी घंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी वेंकटा सुब्बारामा शास्त्री से सीखी, जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेह पूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलोडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री VSP गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू is an eminent top grade mridangam artist of Akashwani Hyderabad, known for his exceptional artistry and musical sensitivity. He is the grandson of the late Sri Varanasi Ghantaya Shastri, the legendary mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned mridangam vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrahma Shastri, who retired from Akashwani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashwani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu apne mridangam lay vinyas ka aarambh chaturashtra jati triput tal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu begins his mridangalaya vinyasam with Chaturasra Jati Triputa Talam.

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Laivinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded

0: राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निर्माण प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट अ पखावज रिसाइटल बाय श्री विठल कुमार राजपुरा। डीपली रूटेड इन द म्यूजिकल सॉइल ऑफ इंदौर, द प्रॉमिसिंग पखावज मैस्ट्रो ऑफ द प्रेस्टिजियस नाना साहेब पानसे घराना, श्री विठल कुमार राजपुरा इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। श्री राजपुरा हैज रिसीव्ड रिग्रस ट्रेनिंग इन पखावज फ्रॉम द टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज। द हॉलमार्क ऑफ विठल जी'स प्लेइंग स्टाइल इज द एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ हिज सिलेबल्स, हिज स्विफ्ट रेडीनेस एंड द डिवाइन रेडिशन ऑफ छबि पर्णो विच डीपली टचेस द हार्ट ऑफ म्यूजिक कॉनोजर्स। A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaro, Kalidas Samaro and Chakradhar Sangeet Samaro, Vithalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Shri Vithal Kumar Rajpura is presenting Jhap Taal on the Pakhavaj. He is accompanied on the Sarangi by Shri Jagdish Barot, providing the Lehra.

धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक

ಪರಮೇಶ್ ಚಕ್ರಧಾರ್.

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वना अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखी राधारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वना अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखी राधारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखी रा।

देव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया झत्ताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड झत्ताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
3: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
2: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
5: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne se hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
4: प्रेजेंटिंग हार्ड इकोनॉमिक डेटा टू काउंटर पर्सिस्टेंट क्रिटिक्स, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. Earlier today, President Murmu conferred the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the President. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, said today work was also underway to construct an access road from nearby Siafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief, HADR, operations in the country. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over northern and northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. Thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are likely over Jammu and Kashmir, Ladakh, Rajasthan, West Bengal, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. In women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a Group A match of the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE tonight. Pakistan had set a target of 56 runs for India. India achieved the target, comfortably scoring 57 for 3 wickets in 8.7 overs. Electing to bat first, Pakistan were all out for 55 in 18.1 overs. And that is the end of this news bulletin.
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।